एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। चिंतन, जब विचार संयमित हो, मन शांत और स्थिर हो, उस अवस्था में ईश्वर से ऐक्य स्थापित हो जाता है। उस समय आप मात्र व्यक्तित्व नहीं रह जाते, अपने में सृष्टि की समग्रता समेटे हुए पूरे अस्तित्व का अभिनय अंग बन जाते हैं। ईश्वर से अनन्यता घट जाती है।

प्रेम की परिभाषा अगर जाननी हो तो राधा को जानो। मथुरा भक्ति का अर्थ अगर जानना हो तो राधा को जानो। निसंग निर्मोही उत्कट प्रेम की परिभाषा का दूसरा नाम है राधा। इस राधा का हर रूप लुभावना है, प्रेम की दीवानी राधा, कृष्ण सखी राधा, मुरली की धुन पर झूमती सुदबुद्ध खो उठती राधा।

भगवान का ना कोई रूप है न रंग है, वह अविनाशी और अपार है। जो भी इस दुनिया में दिखता है वह सब उस परम पिता परमात्मा की महानता का वर्णन करता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 होने को हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, सुबह 7:10 पर रोजाना आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात, और सुप्रभात में आज हम बात करेंगे रेड क्रॉस दिवस पर। 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का समय रहता है सुबह 8:30 पर, और सुबह 9:00 सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

किसान व बागवान भाई बहनों के लिए मौजा ग्राइंदिया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर और किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर।

आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:18 पर शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, सुबह 8:00 समाचार प्रभात और शाम 8:45 पर समाचार संध्या, 8:15 पर सुबह अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। छह बजकर 55 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the Legislative Party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Arlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the Chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said government food grain stocks have reached over 604 lakh tons in the country, which is nearly three times higher than the mandatory buffer requirement. In a social media post, the minister said robust wheat and rice reserves are ensuring an uninterrupted supply for welfare schemes and the public distribution system across the country. Mr. Joshi said strong procurement, successful harvest and sustained support for farmers continue to reinforce India's commitment towards food security, farmer welfare and a resilient future. He highlighted that India's food security framework continues to grow stronger under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Russia has announced a ceasefire in its ongoing war with Ukraine beginning today till May 10th during celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory in World War II. The announcement was made by the Russian Defense Ministry following a decision by President Vladimir Putin. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a summit in Yerevan that Russia might avoid displaying military equipment during its May 9th Victory Day parade because of fears of possible drone attacks over Moscow's Red Square. In response, Russian officials warned that any Ukrainian attack on Moscow during the parade could trigger a large missile strike on central Kyiv. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova also criticized Western countries over their stance on May 9 celebrations and accused them of distorting Soviet history. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using the DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell March scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell March was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today and tomorrow. The Met Department says the thunderstorm

पूर्व काल की पूर्व अंग की बोल बनाव ठुमरियों की विशेषज्ञ और संवाहिका हैं। आधुनिक उपशास्त्रीय संगीत के भंडार को उन्होंने समृद्ध किया है। ख्याल गायन के कार्यक्रम का आरंभ करने वाली गिरिजा जी ठुमरी, चैती, कजरी, झूला आदि भी उतनी ही तन्मयता और खूबसूरती से गाती थी कि श्रोता झूम उठते थे। उनकी एक कजरी बहुत प्रसिद्ध हुई। अपने गायन में दक्ष होने के कारण ही गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। उन्होंने एक साक्षात्कार में भी कहा था कि मैं भोजन बनाते हुए रसोई में अपनी संगीत की कॉपी साथ रखती थी और ताने याद करती थी। कभी कभी रोटी सेकते वक्त हाथ चल जाता था, लेकिन मैं संगीत सीखना नहीं छोड़ती थी। अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए गिरिजा देवी को कई पुरस्कार मिले थे। उन्हें पद्मश्री 1972 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में, पद्मश्री 1999 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 और महासंगीत सम्मान अवार्ड 2012 और 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी की 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में उनका निधन हो गया था।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के अंदर से। हम बात कर रहे हैं आज विशेष पर भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का जन्म आज ही के दिन यानी 8 मई 1916 को एर्नाकुलम केरल में हुआ था। इनका मूल नाम बालकृष्ण मेनन था। इन्होंने सारे भारत का भ्रमण करते हुए देखा कि देश में धर्म संबंधी अनेक भ्रांतियां फैली हैं। उनका निवारण कर शुद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी ने गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया और 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना की। स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन बड़े ही तर्कसंगत और प्रेरणादायी होते थे। उनको सुनने के लिए काफ़ी भीड़ एकत्र हो जाती थी। स्वामी जी ने सैकड़ों सन्यासी और ब्रह्मचारी प्रशिक्षित किए, हजारों स्वाध्याय मंडप स्थापित किए, बहुत से सामाजिक सेवा के कार्य भी उन्होंने प्रारंभ करवाए थे। उपनिषद, गीता और आदि शंकराचार्य के 35 से अधिक ग्रंथों पर उन्होंने व्याख्याएं लिखी। गीता पर लिखा गया उनका भाष्य सर्वोत्तम माना जाता है। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने चिन्मय मिशन की स्थापना की जो दुनिया भर में वेदांत के ज्ञान के प्रसार में संलग्न है। साथ ही ये संस्था कई सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यों की गतिविधियों की भी देखरेख करती है। 1993 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में चिन्मयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की का प्रतिनिधित्व किया था और एक शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद जी को ये सम्मान मिला था।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: स्वागत है एक बार फिर से सुप्रभात कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि आज रेड क्रॉस दिवस है, विश्व रेड क्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 150 वर्षों से पूरे विश्व में रेड क्रॉस के स्वयंसेवक असहाय और पीड़ित मानवता की सहायता के लिए काम करते आ रहे हैं। भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। तब से रेड क्रॉस के स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार के आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो नारा दिया है वो है कि अपने अंदर के स्वयंसेवक को पहचाने। विश्व के लगभग 200 देश किसी एक विचार पर सहमत हैं तो वह है रेड क्रॉस का विचार। युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की चिकित्सा के साथ प्रकृति के महाविनाश के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए हमेशा डटा रहता है रेड क्रॉस। पीड़ित मानवता की सेवा के बिना भेदभाव के करते रहने से का विचार देने वाला रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाले महान मानवता प्रेमी जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्म दिवस पर ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और पूरे विश्व के लोगों को मानवतावादी सेवक के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तो इस विषय पर और भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुनते हैं गीत।

सुप्रभात कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। वर्तमान में विश्व के 186 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कर रही है। वर्ष 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति से विचलित हेनरी ड्यूनेंट ने 9 फरवरी 1863 को जेनेवा में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। हेनरी की इस परिकल्पना का नाम था इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द ऑर्डेंट। उसी वर्ष अक्टूबर में जेनेवा में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 18 विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी में रेड क्रॉस को अमली जामा पहनाने का मसौदा तैयार किया। इस संस्था की पहचान के लिए सफेद पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस चिन्ह को मान्यता दी गई। आज ये चिन्ह पूरे विश्व में पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया है। इसके साथ ही ये भी अति महत्वपूर्ण है कि विश्व का पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खुला था। आज विश्व के अधिकांश ब्लड बैंकों का संचालन रेड क्रॉस और उसकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। रेड क्रॉस द्वारा चलाए गए रक्तदान जागरूकता अभियान के कारण ही आज थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया जैसी अनेक जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की जान बच रही है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 7:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 15वां अध्याय धार्मिक मंथन। अब फिर ईसाई मित्रों के साथ अपने संपर्क पर विचार करने का समय आया है। मेरे भविष्य के बारे में मिस्टर बेकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे मुझे विलिंगटन कन्वेंशन में ले गए। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में कुछ वर्षों के अंतर से धर्म जागृति अर्थात आत्मशुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। इसे धर्म की पुनः प्रतिष्ठा अथवा धर्म के पुनरुद्धार का नाम दे सकते हैं। ऐसा एक सम्मेलन विलिंगटन में था। उसके सभापति वहां के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ पादरी रेवरेंड एंड्रू मरे थे। मिस्टर बेकर को यह आशा थी कि इस सम्मेलन में होने वाली जागृति वहां आने वाले लोगों के धार्मिक उत्साह और उनकी शुद्धता की मेरे हृदय पर ऐसी गहरी छाप पड़ेगी कि मैं ईसाई बने बिना ना रह सकूंगा। फिर मिस्टर बेकर का अंतिम आधार था प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में उन्हें खूब श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि अंतःकरण पूर्वक की गई प्रार्थना को ईश्वर सुनता ही है। प्रार्थना से ही मूलर जैसे व्यक्ति अपना व्यवहार चलाते हैं। इसके दृष्टांत भी वे मुझे सुनाते रहते थे। प्रार्थना की महिमा के विषय में मैंने उनकी सारी बातें तटस्थ भाव से सुनी। मैंने उनसे कहा कि यदि ईसाई बनने का अंतर्नाद मेरे भीतर उठा तो उसे स्वीकार करने में कोई भी वस्तु मेरे लिए बाधक ना हो सकेगी। अंतर्नाद के वश होना तो मैं इसके कई वर्ष पहले सीख चुका था। उसके वश होने में मुझे आनंद आता था। उसके विरुद्ध जाना मेरे लिए कठिन और दुखद था। हम विलिंगटन गए। मुझे सांवले साथी को साथ में रखना मिस्टर बेकर के लिए भारी पड़ गया। मेरे कारण उन्हें कई बार अड़चने उठानी पड़ती थीं। रास्ते में हमें पड़ाव करना था क्योंकि मिस्टर बेकर का संघ रविवार को यात्रा ना करता था और बीच में रविवार पड़ता था। मार्ग में और स्टेशन पर पहले तो मुझे प्रवेश देने से ही इनकार किया गया और झक झक के बाद जब प्रवेश मिला तो होटल के मालिक ने भोजन गृह में भोजन कराने से इनकार कर दिया। पर मिस्टर बेकर यूं आसानी से झुकने वाले नहीं थे। वे होटल में ठहरने वाले के हक पर डटे रहे, लेकिन मैं उनकी कठिनाइयों को समझ सका था। विलिंगटन में भी मैं उनके साथ ही ठहरा था। वहां भी उन्हें छोटी छोटी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। अपने सद्भाव में वे उन्हें छिपाने का प्रयत्न करते थे, फिर भी मैं उन्हें देख ही लेता था। सम्मेलन में श्रद्धालु ईसाइयों का मिलाप हुआ। उनकी श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। मैं मिस्टर मरे से मिला। मैंने देखा कि कई लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके कई भजन मुझे बहुत मीठे मालूम हुए। सम्मेलन 3 दिन चला। मैं सम्मेलन में आने वालों की धार्मिकता को समझ सका, उसकी सराहना कर सका, पर मुझे अपने विश्वास में अपने धर्म में परिवर्तन करने का कारण न मिला। मुझे यह प्रतीति न हुई कि ईसाई बनकर ही मैं स्वर्ग जा सकता हूँ अथवा मोक्ष पा सकता हूँ। जब यह बात मैंने अपने भले ईसाई मित्रों से कही तो उनको चोट तो पहुंची, पर मैं लाचार था। मेरी कठिनाइयां गहरी थीं। एक ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें जो मानता है वह तर जाता है। यह बात मेरे गले उतरती ना थी।
यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सब उसके पुत्र हैं। यदि ईसा ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर ही हैं, तो मनुष्य मात्र ईश्वर के समान है, ईश्वर बन सकता है। ईसा की मृत्यु से और उनके रक्त से संसार के पाप धुलते हैं। इसे अक्षरशः सच मानने के लिए बुद्धि तैयार नहीं होती थी। रूपक के रूप में उसमें सत्य चाहे हो। इसके अतिरिक्त ईसाइयों का यह विश्वास है कि मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवों के नहीं, और देह के नाश के साथ उनका संपूर्ण नाश हो जाता है। जबकि मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। मैं ईसा को एक त्यागी महात्मा दैवी शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकता था, पर उन्हें अद्वितीय पुरुष के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए शक्य न था। ईसा की मृत्यु से संसार को एक महान उदाहरण प्राप्त हुआ, पर उनकी मृत्यु में कोई गूढ़ चमत्कार पूर्ण प्रभाव था। इसे मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। ईसाइयों के पवित्र जीवन में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो अन्य धर्मावलंबियों के जीवन में ना मिली हो। उनमें होने वाले परिवर्तनों जैसे ही परिवर्तन मैंने दूसरों के जीवन में भी होते देखे थे। सिद्धांत की दृष्टि से ईसाई सिद्धांतों में मुझे कोई अलौकिकता नहीं दिखाई पड़ी। त्याग की दृष्टि से हिंदू धर्मावलंबियों का त्याग मुझे ऊंचा मालूम हुआ। मैं ईसाई धर्म को संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म के रूप में स्वीकार ना कर सका।

0: राम भजन अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा में। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा? 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
4: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा? 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
4: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, 8 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
3: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
4: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
3: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
2: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
5: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
2: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएज इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
8: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the Pochishe Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA-ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Centre in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
7: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edapati Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
9: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK Secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the General Secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
7: President of Vietnam, Tho Lam, has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
3: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
7: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape,

श्रोतो लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब का ये गीत। आपको बता दें कि आज एक ही फिल्म में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। बेताब फिल्म 1983 में बनी थी। ये एक बेहद सफल बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें सनी देओल और अमृता सिंह ने भूमिका निभाई है। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत।

एक ही फिल्म में आज आप सुन रहे हैं 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब के कुछ चुनिंदा गीत। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई सनी देओल, अमृता सिंह, शम्मी कपूर और प्रेम चोपड़ा ने। राहुल देव ने निर्देशन किया और निर्माता हैं विक्रम सिंह दहल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: इंस्पिरेशन बिल्ड इनटू एवरी अराइवल। दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
4: मीट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, द एसयूवी दैट्स बिग ऑन स्टाइल एंड स्मार्ट ऑन वैल्यू। विद इट्स बोल्ड डिजाइन एंड स्पेशियस कंफर्ट, इट्स बिल्ट टू इंप्रेस एवरी सिंगल डे।
3: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹6.70 lakh।
4: यस, ₹6.70 lakh, वैलिड टिल 31st May। डोंट मिस आउट, विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम एंड ब्रिंग होम योर फ्रॉन्क्स टुडे।
3: Offers for a limited time only. TNC apply.
5: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: Nexa. Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
4: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa.
5: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
4: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
4: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
0: Nexa.
6: बेताब फिल्म के गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म के सभी गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने, और इस फिल्म में सभी गीतों को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

तो श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, फिल्म बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

उठती नहीं है आंख किसी और की तरफ, उठती नहीं है आंख किसी और की तरफ, पाबंद कर गई किसी की नज़र मुझे। तुम्हारी आंखों में जो बात हो गई है हकीकत अब तो कोई ख्वाब हो गई है। जी हाँ श्रोताओं, आंखें जिनका शायरी में महत्वपूर्ण स्थान है, शायरों ने आंखों की कल्पना प्रकृति से की है। कहीं इन्हें सागर जैसी गहरी और झील जैसी गहरी कहा गया है, तो कहीं मैं के प्याले कहा, तो कहीं फिर दिल की जुबां भी।

0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब जे एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC अप्लाई।
3: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
4: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
3: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
4: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
4: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब जे एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC अप्लाई।
5: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। नजर से उनकी यूं मिल गई पहली नजर अपनी, नजर से उनकी मिल गई यूं पहली नजर अपनी, कि उनका देखना देखा ना गया।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा IPL का अहम मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन है। इन चुनावों के लिए नामांकन

0: 383 सिरमौर में, 917 शिमला में, 184 जबकि किन्नौर में 190 नामांकन पत्र दर्ज किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
1: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उनका ये दौरा प्रदेश में चल रहे नगर निगम व पंचायती राज चुनाव के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान वे मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक व चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सौदान सिंह आज शाम मंडी पहुंचेंगे। कल उनका मंडी जिला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों, संगठनात्मक बैठकों व चुनावी गतिविधियों में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। किन्नौर जिला में क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण व उत्सव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से 10 मई तक कल्पाकंडे के गोली में किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव कल आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग डे व हिमालयन बर्ड काउंट के साथ समन्वित रहेगा। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य किन्नौर व हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करना और स्थानीय समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन संरक्षण व सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित होगा और टूरिज्म को हवा देगा, जिससे पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेडक्रॉस पर हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूटेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2026 की इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। ये थीम मानवता को जीवित रखने और अग्रिम पंक्ति के नायकों को सम्मान देने पर केंद्रित है। ये दिन युद्ध, आपदा और महामारी के दौरान राहत कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को समर्पित है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया भर में संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य संकटों के दौरान जरूरतमंदों को मानवीय सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के प्रयासों को ये थीम सलाम करता है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है, बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और वास्तुकार व शिल्पकारों को लाभ देने के उद्देश्य से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के लागू हो जाने से जहां विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों का विकास हो रहा है, वहीं उन्हें 1 लाख रुपए तक का ऋण सस्ती ब्याज दर पर 5% पर मुहैया करवाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा भी अपनी समृद्ध कला व संस्कृति के लिए जाना जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना यहाँ के शिल्पकारों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: चंबा का प्रसिद्ध चंबा रुमाल हो, यहाँ की चप्पल हो या यहाँ की प्राचीन धातु कला हो, इससे कई शिल्पकार वर्षों से जुड़े हैं तथा आज देश विदेश में अपनी छटा बिखेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे शिल्पकारों के उत्थान के लिए ही पीएम विश्वकर्मा योजना संचालित की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से इस कला से जुड़े शिल्पकार काफी उत्साहित हैं और जिला के कई शिल्पकार इस योजना से जुड़कर इसका लाभ भी ले रहे हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: शिमला

0: जिला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे में 10 मई से फिर नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये सेवाएं 2 नवंबर 2025 से बंद थी, अब दोबारा सेवाएं शुरू होने से पर्यटन कारोबार और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 11 मई को पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स 11 की टीम कल शाम धर्मशाला पहुंची। धर्मशाला में खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोच रिकी पॉन्टिंग की देखरेख में टीम आज से अभ्यास करेगी। पंजाब किंग्स के लिए धर्मशाला के मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं। टीम को पिछले 3 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए धर्मशाला में जीत दर्ज करना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम कल धर्मशाला पहुंचेगी। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पूर्व सीपीएस के सरकारी आवास खाली ना करने पर हाईकोर्ट सख्त। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाईकोर्ट सख्त, पूर्व सीपीएस के सरकारी आवासों पर कब्जे को लेकर प्रदेश सरकार से मांगा रिकॉर्ड। पंजाब केसरी की खबर है, नई दिल्ली शिमला के बीच 10 मई से बहाल होगी हवाई सेवा, शिमला धर्मशाला के बीच भी होगी उड़ान। हिमाचल में हाईटेक होगी सेब की खरीद फरोख्त, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सीएम ने एचपीएमसी को फल खरीद की तैयारी के दिए निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में होगा आईपीएल का अहम मुकाबला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

जी हाँ श्रोताओ, तो ये नैन, ये आँखें है ही ऐसी प्यारी चीज़। कभी तो किसी की आँखों की चाहत में कोई अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। तो क्या ये आँखें कुछ बोलती भी हैं? जी हाँ बिल्कुल बोलती हैं। जुबान नहीं है लेकिन फिर भी है, बोलती हैं। कोई नाराज़ होता है तो हम उसकी आँखों को देखकर समझ जाते हैं, प्यार में है तो बातों को समझ जाते हैं। और क्या कुछ और भी बातें ये नैन हमसे करते हैं, आइए देखते हैं।

जो उठते हुए बादल से हवाओं ने कहा, जो उठते हुए बादल से हवाओं ने कहा, जो उड़ते हुए आपके आंचल ने कहा, वो राज जो खुलकर कह सका ना कोई, वो उठती हुई आपकी निगाहों ने कहा।

झुका के आंखें जब मुस्कुराती हो तुम, झुका के आंखें जब मुस्कुराती हो तुम, कसम से दिल को चुरा ले जाती हो तुम।

0: अप्रैल धमाका आ गया है। अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा? 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।

किसी की गहरी नीली आंखें देखकर एक हालत पर न रहने पाए दिल की हसरतें। तुमने जब भी देखा नए अंदाज से देखा मुझको,

0: कर ले मुलाकात।
1: चलिए श्रोताओं, इनकी आंखें कैसी हैं और क्या बातें करती हैं, अब ये तो यही जाने। और हम मिलेंगे आपसे किसी और कार्यक्रम में। फिलहाल नर्मदा को ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत रीना के साथ।

फिल्म संगीत लेकर हाजिर हैं हम और सभी श्रोताओं को रीना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहब्बतें फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है उदित नारायण, श्वेता पंडित व साथियों ने। ये संगीत है जतिन ललित का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं क्या कहना फिल्म से ये गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार सानू।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा? 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म क्या दिल ने कहा से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत के लिए संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और गीतकार हैं संजय छैल।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म होगी प्यार की जीत से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ और जसविंदर नरूला ने। संगीत आनंद मिलिंद का है और गीतकार हैं समीर।

श्रोताओ, ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है संजू राठौड़ और विमला राठौड़ ने।

0: साजन सिकंदर की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
5: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
4: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC apply.
0: हिमाचली गीतों व लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई FIR कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रेम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी

0: अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों की दिल की धड़कन रहा है।
1: आकाशवाणी भारत की धड़कन था।
0: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से। गायक कलाकार हैं गुरदास मान, लता मंगेशकर, उदित नारायण व साथी। संगीत मदन मोहन का है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
3: तो इंतजार कैसा, 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।

0: जाल द ट्रैप, इस फिल्म का देशभक्ति गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद राज आनंद के संगीत निर्देशन में।
1: जहां जाते

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं,

0: वहां बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
0: जी
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
0: जी
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
0: जी
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक

की कहानी थी। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।

0: আমাদের শান্তি।
1: সন 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
2: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
2: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
3: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
2: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
3: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
2: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों, जय हिंद। हाजिर हैं हम आपके मनोरंजन के लिए लेकर फिल्म संगीत।
1: ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से

खफा हुस्न फूलों से हो किस लिए, ये मासूम है बेखता इसलिए, बेखता इसलिए फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको।

प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत सैनिक भाइयों हम आपको सुनवा रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं केजे यसुदास की आवाज है और फिल्म है साजन बिना सुहागन।

0: सैनिक भाइयों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। महेंद्र कपूर की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं निकाह फिल्म का ये गीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म का गीत। अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अगला गीत, फिल्म है आप तो ऐसे न थे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर परिवार।

स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम घर परिवार में। जी हाँ, बातों और गीतों के इस मिले जुले सफर में हाजिर हैं हम, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ सखियों, ढेर सारी बातों और खूबसूरत गीतों के साथ एक बार फिर से आ गए हैं हम, और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, जिसके मिजाज आजकल बदले बदले से हैं और हर कोई हैरान है कि मई के महीने में ये कैसा मौसम। जब बहुत बारिश हो रही है तो ठंड का एहसास दिला रही है और कई बार तो हम स्वेटर या शॉल लेने को भी मजबूर हो रहे हैं। सच में सखियों, कुछ सालों से मौसम में कई तरह के बदलाव हम देख रहे हैं। ना तो समय पर ठंड हो रही है, ना ही बारिशें और ना ही गर्मी, और इसका कारण कहीं ना कहीं हम सब ही हैं। लगातार हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। शहरीकरण हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। गांव तो अब कहने भर को ही रह गए हैं कि गांव है ना, क्योंकि वहां भी अब सड़कों का जाल बिछ गया है, सड़कें निकल चुकी हैं। प्रदूषण हो रहा है औद्योगिकीकरण की वजह से, कितने ही पेड़ जंगल काट दिए जा रहे हैं ताकि सड़कों का जाल बिछाया जा सके, नए नए उद्योग स्थापित किए जा सके। और ये अच्छी बात है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पेड़ों को काटने के स्थान पर हमें नए पेड़ या नए जंगल ज़रूर लगाने चाहिए ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे और ये हमें साफ स्वच्छ हवा दे सके। अपने आसपास आप ज़रूर पेड़ लगाएं और अपने वातावरण को हरा भरा बनाए रखें। मौसम से क्यों इस तरह करवट बदल रहा है कि कब बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, पता नहीं लग रहा है ना, जिससे हमारे किसान बहुत परेशान हैं। फसल काटने का समय चल रहा है और कई लोग बेचारे इस मौसम की वजह से परेशान हैं। कितनी मेहनत हमारे किसान साथी करते हैं, और जब फसल काटने का समय आता है तो इस तरह के मौसम की वजह से कई बार फसल खराब हो जाती है। तो इसके मौसम को देखकर ही खेतीबाड़ी के काम करें ताकि नुकसान ना हो। और मौसम का हाल चाल तो वैसे अब हमें हमारे फ़ोन के माध्यम से पता लग ही जाता है कि कुछ दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, तो उस हिसाब से ही खेतीबाड़ी के काम करें और बिना परेशानी के और नुकसान के आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और काम के साथ साथ मनोरंजन बहुत ही ज़रूरी है, और हम अपनी सखियों का मनोरंजन करवाते रहते हैं, खूबसूरत से गीत उनके लिए लेकर आते हैं ताकि बातें भी वो सुन सके और खूबसूरत गीतों का भी मज़ा ले सके। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत। दलाल फिल्म से ये गीत हमने लिया है और बप्पी लहरी कुमार सानू की मिली जुली आवाज़ों में है। चलिए साथ में सुनते हैं, बाकी की बातें करेंगे इस गीत के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जैसे कि खूबसूरत से गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम घर परिवार में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी रीना। और सखियो, अब हम बात करेंगे हमारे आज के विषय की, और विषय है रेड क्रॉस दिवस। जी हाँ, आज है 8 मई और आज के दिन को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक और पहले नोबेल शांति

पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनमेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध, आपदाओं और महामारी के समय बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ योगदान को सम्मानित करना और रेड क्रॉस के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाने के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो ये हैं कि मानवता की सेवा करना, जी हाँ, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं में घायल सैनिकों, नागरिकों और बेघर लोगों को सहायता प्रदान करना, स्वयंसेवकों को सम्मान देना, उन लाखों रेडक्रॉस स्वयंसेवकों के प्रयासों को सलाम करना जो दुनिया भर के संकटग्रस्त लोगों की मदद करते हैं, शांति और भाईचारा बढ़ाना, धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना मानवीय सहायता और शांति के संदेश का प्रसार करना, हेनरी ड्यूनमेंट को सम्मान देना, जी हाँ, रेडक्रॉस के संस्थापक के प्रति आभार व्यक्त करना जिन्होंने 1859 में सोलफेरिनो की लड़ाई में घायलों की दुर्दशा देखकर इस संगठन की नींव रखी। ये दिवस 1984 से विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। लोगों को उदारता और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और अब बात करेंगे मानवता की सेवा परम धर्म पर। जी हाँ, सखियो, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज सभी के मेल जोल से चलता है ना। सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है। और अगर हम ऐसा सोचें कि हम बहुत ही सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये सोचना गलत है। समाज, देश, परिवार आपसी सहयोग और प्यार से चलता है। और समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोगों को दूसरों की मदद की, सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। और जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको ज़रूरतमंदों की मदद जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरों की सेवा करना, प्यार देना, अपनापन देना, ये मनुष्य होने के गुण हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन ज़िंदगी का असली मतलब दीन दुखियों की सेवा करना और मानवता के लिए जीना है। निस्वार्थ भाव से दुखी, ज़रूरतमंद और पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म और ईश्वर की सच्ची पूजा है। ये सिद्धांत बताता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य इंसानियत, भाईचारा, करुणा और परस्पर प्रेम फैलाना है, न कि केवल कर्मकांड करना। मानवता के बिना धर्म अधूरा है, इसलिए पीड़ित इंसान की मदद करना किसी भी पूजा पाठ से श्रेष्ठ है। हर धर्म और संस्कृति प्रेम, सहयोग और उदारता का संदेश देती है जो मानवता का आधार है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बीमारों की देखभाल, सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखना, ये सब मानवता की सेवा है। और हम सभी को ये करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी को असली मतलब मिल सके। और सखी, इसके साथ ही बात करेंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सप्तऋषि के बारे में। जी हाँ, सप्तऋषि हिंदू धर्म में सात सर्वोच्च ऋषियों का ये समूह है जिन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। ये वैदिक ज्ञान के रक्षक, धर्म के संस्थापक और मानवता के मार्गदर्शक हैं। इनका नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वमित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये हर कल्प में बदलते हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुई थी। ये सभी ऋषियों में सर्वोच्च हैं और ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, जो वेदों के प्रसार और सृष्टि में धर्म बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। आकाश में ग्रेट बियर तारामंडल को इन सात ऋषियों का प्रतीक माना जाता है, जिसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है क्योंकि शिवजी ने इन्हें गुरु बनकर ज्ञान दिया था, इसलिए इन्हें महादेव का प्रिय भी माना जाता है। तो ये थी जानकारी सप्तऋषि पर। और अब फिर से वक्त मनोरंजन का, चलिए साथ में सुनते हैं खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बर्दाश्त से। और हिमेश रेशमिया, उदित नारायण की मिलीजुली आवाज़ों में ये गीत है, साथ में सुनते हैं। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में मिलेंगे इस गीत के बाद।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
3: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
2: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
3: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
2: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
3: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
4: जी हाँ, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में फिर से हाजिर हैं हम, और आप सभी जानती हैं खान पान का ये पड़ाव है हमारी रसोई घर से संबंधित, इसमें बातें होती हैं। सिक्यों गर्मियों के मौसम में खाना खाने का मन बहुत बार नहीं करता है, पानी इस मौसम में खूब पिया जाता है और ज़्यादा अगर हम खा लें तब भी बहुत सी समस्याएं हमें हो जाती हैं। इस मौसम में हमें हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए ताकि हमारा पेट ठीक रहे और हम बीमार भी ना हों। फल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये हमें तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। ताज़ा फलों का रस या जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बजाय डिब्बाबंद जूस या ठंडे पेय पदार्थों के। ताज़ा फलों का रस का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है, ये शरीर को तुरंत ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ताज़ा फलों के रस में विटामिन सी, पोटाशियम और अन्य महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नियमित रूप से ताज़ा रस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं, और फलों का रस शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है और शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर ये निकालता है। कुछ ताज़े फलों का रस जैसे चुकंदर का रस हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और एनीमिया को दूर करने में भी मददगार हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण फलों का रस त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये कुछ गुण और फायदे ताज़ा फलों के रस को, तो गर्मियों के इस मौसम में भी आप फलों के रस का खूब मज़ा लें बजाय डिब्बाबंद जूस का या फिर ठंडे पेय पदार्थों का, और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और चलते चलते एक और खूबसूरत सा गीत।

हेलो ब्रदर, फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ सखियो हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह। प्यारे सखियों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिस्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहाँ का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं ना खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे, जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था, मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले ख़त्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई और वो बार बार परोसते रहे और मैं ज़बरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीज़ें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी ये सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैयां से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह के बाद छिड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मज़ेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक कैप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नज़र गई तो सब इतना हंसे और सब ने अपने साथ फ़ोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीज़न चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूँ। ऐसे में दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज़्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है जो उसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में ज़रूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गाँव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनन फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुँचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहाँ के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज़, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज़ किसकी है ये आपको पहचानना है।

0: करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो,
1: बम्बई से।

तो दोस्तों की बातें हो गई, एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है। बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीढ़ी देखते हैं तो यह सब रस्में देख कर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है, हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं, जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं, एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एन्जॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफ़ी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियाँ खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ़ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए, ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की दर्द भरी आवाज़ ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आँखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफ़र, ये सुरीला सफ़र आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी।

0: 7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न चार बड़ी बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जयघोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में ये युद्धघोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।
1: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर, मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। किसी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधे। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
0: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
2: समस्त बंगाल वासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है, इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
1: इस सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ।

इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई। अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय और अधिक संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेने लगे।

आगे 1906 में बहुचर्चित बारिसाल प्रकरण के नेता अश्विनी कुमार दत्त के आह्वान को प्रतिक्रिया देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है, इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को ₹5 का जुर्माना भरना पड़ा।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
1: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्माण

0: स्थित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनः निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी।

0: के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त

0: सभा नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को है, अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रबंधन को परिसंपत्तियां एनपीएस के तहत लगभग 16,00,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 8,96,00,000 से अधिक हो चुकी है। इस योजना का शुभारंभ मई 2015 में किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले स्पीति घाटी के लोसर गांव के युवा खिलाड़ी तंजिन टशी को सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय टीम में हिमाचल से शामिल एकमात्र खिलाड़ी तंजिन टशी ने प्रतियोगिता में कई शानदार गोल किए और चीन के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: मुख्यमंत्री ने तंजिन टशी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तंजिन टशी जैसे खिलाड़ी प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सरकार आइस हॉकी सहित शरतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। इस दौरान ये भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से काजा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से आइस हॉकी स्टेडियम और 8 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और इस वर्ष कार्य शुरू होने की संभावना है। पीटी के इस होनहार खिलाड़ी की उपलब्धि से पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा किया था और इसे अपनी प्रमुख गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासनों पर विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना, जबकि कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस में बने रहने का निर्णय लिया। सिकंदर कुमार ने कहा कि आज स्थिति यह है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देशभक्त यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
2: जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न तो आर्थिक दृष्टि है और न ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने

0: में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार की जनविरोधी, आर्थिक रूप से विफल और पक्षपातपूर्ण नीतियों को लोगों के बीच उजागर किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है। कृषि विकसित भारत के विजन में एक आधारभूत स्थान रखती है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 4.45% की दर से वृद्धि दर्ज की है, जो पूर्ववर्ती दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। इस परिवर्तन के केंद्र में बागवानी है, जो भारत की उच्च मूल्य फसल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरी है। फलों और सब्जियों से लेकर फूलों, मसालों और बागान फसलों तक बागवानी ग्रामीण परिदृश्य को रूपांतरित कर रही है। पारंपरिक मुख्य फसलों के विपरीत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें प्रति इकाई भूमि पर अधिक प्रतिफल उत्पन्न करती हैं और कृषि सकल मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में कृषि के विकास के प्रेरक के रूप में बागवानी क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उपक्षेत्र के सकल मूल्य उत्पादन में लगभग 37% योगदान देता है और भारत की कृषि विकास की दिशा में एक आधारशिला के रूप में उभरा है। उत्पादन में निरंतर वृद्धि इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है, जो न केवल समग्र कृषि उत्पादन में बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर मूल्य संवर्धन में भी परिलक्षित होता है। बागवानी क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति इसके रणनीतिक महत्व को और सुदृढ़ करती है। देश सब्जियों, फलों और आलू के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में फलों का योगदान 9.18% तथा सब्जियों का योगदान 8.18% है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने उच्च मूल्य कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विशिष्ट क्षेत्र आधारित भिन्न रणनीति पर बल दिया है, जो कृषक आय बढ़ाने और उत्पादन प्रणालियों में विविधता लाने की इसकी क्षमता को स्वीकार करता है। नारियल क्षेत्र भारत की बागवानी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल हैं, की आजीविका का समर्थन करता है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 22.44% योगदान देता है तथा खेती के क्षेत्रफल के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है, जो विश्व के कुल नारियल क्षेत्र का करीब 19.23% है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत नारियल विकास बोर्ड ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नारियल की खेती और संबंधित उद्योगों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और कम उपज देने वाले पेड़ों को उन्नत पौधों और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों से प्रतिस्थापित करना शामिल है। भारत में काजू और कोको की खेती के संगठित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। बादाम एक अन्य उच्च मूल्य समतोषण मेवा नट फसल है, जो विशेष रूप से हृदय संबंधी तथा पाचन स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण और स्वास्थ्य लाभों के कारण व्यापक रूप से पहचानी जाती है। बागवानी सांख्यिकी इकाई कृषि व किसान कल्याण विभाग के अनुसार भारत में वर्ष 2024-25 में बादाम का उत्पादन करीब 14,000 मीट्रिक टन रहा, जिसकी खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केंद्रित है। जम्मू कश्मीर देश के कुल उत्पादन में 83% से अधिक योगदान देता है और कश्मीर क्षेत्र में प्रमुख प्रसंस्करण और विनिर्माण केंद्र स्थापित है। हिमालय क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण मेवा फसल चिलगोजा है, जो अत्यंत मूल्यवान चिलगोजा पाइन नट्स का उत्पादन करती है। इसे अक्सर चैंपियन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है। ये फसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनजातीय समुदायों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चिलगोजा पाइन उत्तर पश्चिमी हिमालय की आंतरिक शुष्क चोटियों में उगता है, जहां कम वर्षा और भारी शीतकालीन हिमपात जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे ये प्रजाति पारिस्थितिक रूप से अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाती है।
2: सामयिक चर्चा आपने सुनी, विषय था भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचिक स्वर प्रभा शर्मा का था। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
4: बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
5: जी बिल्कुल सही
4: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
5: जी जी
4: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
5: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
4: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
5: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
4: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
5: जी,
4: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
5: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
4: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
5: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन, कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से
0: हसीना भी। तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, वो साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है इस दिल का।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना बताइए।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, आपकी तरफ कैसा मौसम है?
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुन रहा
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिक्की से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो।
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती हैं हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: जानकारियां भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी, बताइए आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत।
0: जी हाँ
1: जी हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल हो गई।
0: जी,
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनती रही मैं।
0: जी
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।
2: पान

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से।
0: झनकार, झनकार मुंबई से, क्या
1: जी
0: बात है! आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं
0: जी,
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है! तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि
1: हाँ,
0: आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं, तो अभी
0: जी
1: भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है!
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: तई से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं,
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है,
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने
1: भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ,
0: जी
1: मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत् तत् है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की, कि
0: क्या बात है!
1: वो जैसे बोलती थी, थई जोर से मारो, तत् लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी तो
0: कहा।
1: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी, हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है ना
1: हाँ, इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी?
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत् तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक है, तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक है, टिक दा दिक टिक है, टिक दा दिक टिक है, ता थे तत् थे, तत् तत् थे, तत् तत् थे। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है,
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी! तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झनकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी फिल्म
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आजमी।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में इस
1: अच्छा सा और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है कोई?
1: ये निंदाई खुदाई है, तो को चारा वारा डालना है, इसमें
0: जी,
1: पानी देना है। हाँ
0: तो वहाँ पे पशु भी हैं,
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी
1: हाँ है
0: हैं।
1: ना, है भैंस भैंस है, भैंस
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में?
1: है भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे। तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: भी
0: देने
1: बहुत है
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके, बैठ
1: गाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं।
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर
0: होता
1: वो वहां
0: होगा।
1: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के चला जाते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। तो चलिए
1: हाँ
0: सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से? मनीषा जी
1: मध्य प्रदेश
0: जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं?
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का। तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: नमस्ते
1: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
0: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला वारा राजस्थान से, प्रेम लता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: 7 सालों के बाद?
0: जी दीदी,
1: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
0: हाँ दीदी बहुत खुशी हो रही है।
1: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
0: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
1: जी,
0: उसमें जाना पसंद है मुझे।
1: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
0: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
1: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 02 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली। दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों

पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज़्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी, कितने दिन रहूँगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया?

0: क्या बात थी आखिर?
1: मैंने उसके कंधे को सहलाया। उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई। उसने खिड़की खोली। धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
2: तो कितनी

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था, इसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नज़दीक पहुँचे। हाथों में ग्लब्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज़ के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के

शख्स की अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची। मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरसते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम

हमारे हिस्से में आई और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी मेरी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि माँ बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताज़ी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

0: उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊँ। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने माँ बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। ओस में भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहाँ जा रही है वही उसकी असली माँ है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।
1: फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कस कर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया।

फिर लौट कर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलट कर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल बनर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. In West Bengal, senior BJP leader Subhendu Adhikari has been elected the leader of the BJP legislature party in West Bengal today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. BJP sources said Adhikari's name was proposed at the legislature party meeting and formally announced by Union Home Minister Amit Shah in the presence of newly elected BJP MLAs and senior party leaders.
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल

अभी आप सुन रहे थे भजन। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

युवा दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मैं आपको सुनवाऊंगी कुछ फिल्मी गीत। तो पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुणाल गांजावाला और उदित नारायण की आवाज़ों में, और फिल्म है हलचल।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
4: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
3: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
4: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
5: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जरा हटके जरा बचके से, और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC अप्लाई।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa.

श्रोता विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज में गाए सैयारा फिल्म के इस गीत के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मौजा गराइंदियां और आज के कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा फलदार पौधों की देखभाल। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी और विषय रहेगा शून्य लागत प्राकृतिक खेती। रात्रि 8:00 आकाशवाणी शिमला से विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के

90 साल रिले किया जाएगा। 8:30 पर सुनिएगा देशगान और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज राम लखन फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जाएंगे। और 9:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का, और 10 बजे सुनिएगा कुछ नई फिल्मों से गीत। और चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, और आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या 9 बजे News@9, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये था विवरण आज शाम प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों का। अब एक नज़र कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और साथ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, साथ ही महाराणा प्रताप जयंती पर बात होगी, और इसके साथ ही रमणीय स्थल गुशैनी के बारे में जानकारी दी जाएगी और उपयोगी पुष्प हार सिंगार के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। और महिलाओं के कार्यक्रम में घर परिवार में बातचीत का विषय रहेगा, अपने शौक व हुनर को रखें जिंदा और बनाएं अपनी अलग पहचान, और साथ ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर भी बात की जाएगी और खान पान में भरमा बैंगन बनाने की विधि की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में एकीकृत डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावाली

0: के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब तक करीब 63,000 मामले निपटारे के लिए प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
1: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेड क्रॉस हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। इस मौके पर बच्चों और रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें रेड क्रॉस का स्टिकर भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भी रेड क्रॉस फंड के लिए अंशदान दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से रेड क्रॉस फंड में उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह किया और कहा कि इस फंड से एकत्रित धनराशि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा शिंकुला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त किरण बढ़ाना ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दाचा श्रृंखला सड़क पर बर्फ हटाने और मार्ग बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सड़क अब डबल लेन के रूप में तैयार है, जिस पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहन चल सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित की जाएगी। पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी मौसम और सड़क संबंधी एहतियात और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। दाचा श्रृंखला सड़क मार्ग के खुलने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज शिमला में चारों नगर निगमों सहित नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर पार्टी के जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से फीडबैक ली। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव से संबंधित सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम को हर रोज फीडबैक देने को कहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हेमलता की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ और जिसे हमने लिया है फिल्म सुनैना से।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, फिल्म है करम। गीत लिखा है राजकवि इंद्रजीत सिंह ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

बिन फेरे हम तेरे लीजिए। इस फिल्म में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना को। गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गाए चरित्रहीन फिल्म के इस गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुनने वाले सारे ही श्रोतियां दा अहां अपने इस टियाले पर स्वागत करदे ने। कने मैं टियाले ते तुहां दा लोका पाऊ, कने अज मंजो कने गुलाबो जी। गुलाबो जी राम राम।
1: राम राम लोका पाऊ, राम राम। कने जितने भी हाड़े श्रोते ने ते सबनी जो मेरी तरफ ते भी राम राम। कने देखा लोका पाऊ, अज अहां कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां जेड़े सा टियाले पर जेड़ा सा लेकर आई चुके ने ना।
0: हां जी,
1: देखा हाड़े श्रोते जो भी पता है कि मौजां ग्राएं दियां अहां मतियां भरियां जेड़ी सा टियाले पर लगाई के जांदे ने ना।
0: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल।
0: चाहे गल हो अहां दी जानकारियां दी, चाहे गल हो लोक जानकारां दी, है ना।
1: बिल्कुल,
0: बेले होइए तुहां पट्टियां ते होइयां।
1: दिखा ना लोका बाऊ, मेरा जड़ा इलाका ना सब थोड़ा दे पहाड़ी इलाका है।
0: अच्छा।
1: कने देखा उन इक्की दू दिन च जड़ा सा कणका दे बढ़ने दा जोर जड़ा सा पौने आला है।
0: हां जी, हां जी।
1: लेकिन न्याला दे की बरखा जड़ी है सा नहीं पौना चाहिए है ना।
0: बिल्कुल ठीक लाया।
1: अजे देखा ग्राएं च यही गल रहिंदी की अजकल दा देखा सारे जड़ा सा मौसम दा पहले ही पता लगा लैंदे हरे किसान खास करी है ना, कि कुछ की बरखा जड़ी है सा एक दो दिन ना हो ताली यहाँ कणका बढ़ना लगना। कने अजकल देखा पहले सा ही नहीं है कि पहले बड़ी के रखा तो हाँ फिर त्रश जड़े छोटे छोटे होंगे हे
0: मशीन होंगी
1: तो बड़ा टाइम लगता कने बड़ी बड़ी पीड़ पौंदी ही नंबर पौना बड़ा बड़ी मुश्किल हो जाता हा। लेकिन अजकल जड़ा सा एक तो हाजल ट्रैक्टर बड़े भारी है ना, कने दूई गल ए कि अहां

0: क्या कर देन कि चटपट काम कर देन, निपटने निपटाने वाला काम कर देन, है
1: हाँ
0: ना
1: जी हाँ जी, किसान ने यार समय ज़्यादा काफ़ी हुई है, जियाँ मशीन आई हैं तुहां गलाया है ना,
0: जी।
1: पहले दे याद गुलाबो जी तुहां दसी तो अहाँ भी मशीना च कणका गांधे हे कने खुली के कई बार खुली खुली के काइयाँ देना पौंदियां ही है
0: हाँ
1: ना
0: कहे जे सी जी आए ने एक
1: सीजी।
0: बारी कणक तो बड़े बारी कम पई आंदा है
1: हाँ
0: ना
1: जी हाँ जी, लंबा
0: जी।
1: काम चली आंदा सुकाना पौंदे ही, कई बार कणका कालियां हुई आंदियां ही है ना,
0: हाँ
1: अंबर लैना
0: बिल्कुल
1: नहीं दिंदा है ना।
0: बिल्कुल, लोग बहु कहें देखा अज थोड़ा देर हाड़ा किसान जागरूक हो चुके हैं, ऐसा पहले ही दिखता है कि भाई इतनी तरीका दे कर जी ऐसा बरखा दसी हो है ना,
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: इसी हिसाब ने अपने काम कार शुरू कर दिया है। कने फिर भी अगर तुम जो लगता है कि मौसम जड़ा ऐसा फिर भी तुम जो मौका नहीं दिया करता था, तो हाँ कोशिश करनी है कि तो हाँ ओले ओले दिखा फसल तो पकी चुकी है लगभग
1: पक्की
0: है
1: चुकी
0: ना,
1: लगभग। हाँ जी हाँ जी
0: तो हाँ ओले ओले जड़ा सा जितना हाँ बड़ी लेंदे न कणक आयो तो सही हाँ ढकी दे या फिर तो अंजल कुद के अंदर जगह था तो हाँ कट्ठा करी कर रख सकते हैं ना,
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: यह क्या होता है कि एकदम कणक आयो कि बढ़ देता टाइम ही लगता है, तो हाँ जो जड़ा से फायदा रहता है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: कने ग्राएं दियाँ रौनक हाँ लांदे ने जियाँ कि ग्राएं दे बिच हाड़ा ग्राएं दा विकास किया हुआ है, आधुनिक खेती दी जानकारी यहाँ दिंदे ने, मौसम दी जानकारी दिंदे, जिस होगी फसल प्रबंधन होई या नोई कृषि तकनीक होगी, बीज होई या खाद होगी, सिंचाई दी जानकारी होगी, पशु पालन डेयरी फार्मिंग इस दे सोगी ही मौसम दा पूर्वानुमान कने मिट्टी परीक्षण बागवानी या फिर पशु पालन हर एक जानकारी जड़ी से त्याले दे देने दी कोशिश कर दे न, ताकि हाड़े जड़े ग्राम वासी है ना ते थू रौनका जड़ी से लगी रहना है ना, कने दिखा रौनका लगी रहन, कने सारे दी बड़ी गल ए कि हाड़ा जड़ा कार्यक्रम है से लोकल भाषा जड़ी है तिस दे विच हाँ जड़े से कार्यक्रम दिंदे ने है ना
1: हाँ जी हाँ जी, कहना
0: जी
1: निहाल परांदी है साढ़े श्रोते साढ़े कार्यक्रम दी है ना,
0: जी बिल्कुल
1: ता टाले पर एक लोक भजन शामिल कर देन कने उसके बाद अपनी गलबात जारी रख देना है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
4: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
5: श्रोताओ, तुहां तक ये अरीदा वजन कश्मीरी राम दी आवाज़ च पुजाया कने, कुछ एक संदेश भी तुहां तक पुजाया कने। आशा करदे नूं गुलाबो जी अहां दे श्रोतां पसंद आया होना भजन, है ना
6: जी?
5: तां गल करिए पिछले कल्ले दी, तां मैं ग्राएं च गया गुलाबो जी ना, तो रोला बड़ा हवे दिथू।
6: अच्छा, सह क्या भला?
5: प्यारू भाई हे दिथू, मैं प्यारू भाई बड़े परेशान दे लगे। मैं ले प्यारू भाई क्या गल होई? बोलिया रा होना क्या? बोलिया मिंजो बैंके ते फोन आया, बोलिया ना।
6: अच्छा,
5: कहने तेना बोलिया थोड़ा एटीएम कार्ड बोले बंद होने वाला, कहने बोलिया थोड़े फोन ने पर एक ओटीपी आया होना है।
6: अच्छा,
5: बोले तीसी जो दिया, कहने बोलिया मैं भी देता, कहने उदे बाद बोलिया मेरे खाते च 5,000 रुपया रखे हा, बोलिया तो तेरा कटूने का भी मैसेज कन्ने आई है, बोलिया है ना। तो देखा बोले मैं सोचा पता नहीं क्या हुई है, तो सह गए पुलिस शिकायत करना गए, तो इतों बोलिया तुहाने तो बोलिया साइबर क्राइम हुई है, जिसी बोलते डिजिटल डाका पई है, बोलिया पहले चोर आते हैं ना गुलाबो जी घरे हो,
6: ठगी हुई है यार,
5: हाँ तो फोन ने पर ही जड़ा से ठगिया हुई है ना
6: जी, बिल्कुल।
5: तो प्यारू में बड़ा रोला पाया हा, बोलिया कि सारे दसा दा हा, बोलिया और कोई नहीं ठगू आया है ना
6: जी, बिल्कुल।
5: तो बोला दा कि बोलिया चार गल्ला, बोलिया तुहां बोलिया अपनी गठी बन्नी लैनिया, पहली गल ये बोलिया कि ओटीपी पिन पासवर्ड कदी भी कुसी कने सांझा नहीं करना है ना
6: जी,
5: कोई भी है तुहें गलांदा कि मैं बैंक का अधिकारी बोला दा, पुलिस वाला बोला दा, तुहाड़ा सज्जन मित्र बोला दा, कोई दोस्त बोला दा है ना, तो तुहां जड़ा से अपना ओटीपी पिन पासवर्ड कुसी ने भी जड़ा से सांझा नहीं करना है ना,
6: बिल्कुल नहीं।
5: कने दूई गल तिन्नी ये दसी, बोलिया ये बोला दा कि बोलिया लाल चालिया जेडे लिंक होंगे ना, जियां होई है तुहां दा फ्री रिचार्ज लाटरी होई है
6: जी, बिल्कुल,
5: या फिर केबीसी च तुहाड़ा नाम निकलिया है ना
6: जी,
5: ऐसे जेड़े लिंक न बोले तिना पर कदी क्लिक नहीं करना, कने तुहां जो जेड़ा से अगर तुहां क्लिक करी ता तुहां दा फोन जेड़ा से हैक होई जांदा, कने फिर जेड़ा भी रखे होंदा तुहां से
6: अच्छा
5: राशि जेड़ी है सवाड़ी निकली जांदी है ना।
6: देख लो के बाऊ, मुझे भी नहीं पता है, ये ता
5: नहीं पता हां,
6: ये हैक हो कौन है
5: ता रोला ता बड़ा पाया है प्यार, तुहां नहीं सुनदे कराए दी गप्पा?
6: नहीं सुनदी,
5: तुहां कौन कागे होणे मुझे लगदा,
6: सुन कर सुनना ता मैं भी रहंदी ना, सुनदी रहंदी।
5: अच्छा,
6: लेकिन देखा आजकल ग्राम वासी भी जागरूक जड़े से हो चुके न,
5: लेकिन
6: फिर भी कुछ एक ऐसे हाड़े जड़े व्यस्क न सह हुंदे न, ते नहीं पता नहीं लगदा ता, ते ना जरूर ये गल्ला जड़ियां तुहां दसियां ने ये बड़ी बड़ी जरूरी है, ये कदी भी एक दूए ने सांझा नहीं करनियां ने, कुछ भी नहीं दसनियां ने।
5: साढ़े बुजुर्ग तो बची आते पर पढ़े लिखे ज्यादा ठगुंदे दिच, पक्के होंगे पूरे है ना, शायद अगर तीसी आया होंगे साढ़े कुछ किसी आने तीन बैंक जाना हा पहले,
6: बिल्कुल
5: नहीं ओटीपी देना हा ना,
6: बिल्कुल बिल्कुल। देखा आज दी जड़ी भागदौड़ दी जिंदगी है ना, कई बार यहाँ भागदौड़ च
5: व्यस्तता होंगी बड़ी,
6: बिल्कुल तोले तोले यहाँ क्या करते कि भी इतने व्यस्त होंगे कि अंजल टाइम ही नहीं होंगे सोचने का, कने यहाँ जल्दबाजी जड़ा से ऐसे ऐसे काम जड़े से करी देने, कने कई बार काफी नुकसान हाँ जो होंगे, तो इससे तो हाँ बचना जरूर है ना।
5: हाँ जी, कने त्री गल तिनी बोली कि यूपीआई पिन जड़ा से सिर्फ पैसे भेजने ताई लगता है, अगर तुहा पैसा भेजना है ता तुहां दा यूपीआई लगता, कने तुहां जे बोल के कि 2,000 रुपया पाना, कने तुहां पिन कोड दिया ता सब इते दिया मिनी कमाना तुहां कदी है ना।
6: अच्छा जी,
5: कने अपने फोने पर तुहां जी अनजान ऐप हो ये सै इंस्टॉल नहीं करने, जे कोई अगर इहदा शिकार हो ही भी जांदा है ना गुलाबो जी, तो सह जिहड़ा सह हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर जिहड़ा सह साइबर हेल्पलाइन नंबर है, या फिर cybercrime.gov.in पर जिहड़ा सह शिकायत करी सकता है ना।
6: अच्छा,
5: कने जितनी जल्दी तुहां शिकायत कर गे तुहां दा पैसा मिलने दे चांस उतने ज्यादा जड़े से बद जांदे ने है ना
6: जी, बिल्कुल।
5: ता तिन्नी ता प्यारू है ठीक रोला पाया, कने सह जगा भी करता हा लोकां डंडोरा बिट्टा दा, बोले ओटीपी नहीं देना, लिंक नहीं, कोई अनजान लिंक पर बोलिया वो नहीं करना कने लालच च नहीं होना सबसे बड़ी गल है ना। तो अह भी ट्याले ते ये आग्रह करते हैं ये संदेश देंदे न अपने श्रोतियां कि तुहां कुसी भी लालच प्रलोभन च नहीं होना कने कोई भी तुहां ते ओटीपी नंबर या मंगदा है या स्कीमां दे तहत भी कई बार यहां दियां महिलाएं बोलदे कि तुहां दी डिलीवरी स्कीमां दे पैसे पौने ने या कुछ होना है ना दे ठगियां च तुहां नहीं होना है ना।
6: बिल्कुल लोके बाहू तुहां बड़ी अच्छी कने नोई जानकारी आज अपने श्रोतियां तक पुजाई है कने आशा करदे ना हाड़े जिहड़े श्रोते ने ते सै प्यारगुए ते भी सिखन कने हाड़ी इत्थों ट्याले दी जिहड़ी गलबात है इत्थों ते भी सिखन कि अह कदी भी ये काम जिहड़े से नहीं करने कने जागरूक होने है ना।
5: कने गुलाबो जी ना अपने श्रोतियां एक प्यारा दिया मिठा दिया लोक गीत सुनांदे ना
6: जी बिल्कुल
5: बाकी गल्लां बातां करदे नूं दे बाद
6: जी।

0: किसान साथियों, ये प्यारा दिया मिठा दिया लोकगीत तुसें सुनाया, कने आशा करदे तुसें पसंद भी आया होना है। तो हुण कार्यक्रम च आहां गलबात करनी है फलदार पौद्यां दी, है ना
1: जी? बिल्कुल।
0: तो दिखा फलदार पौद्यां दी खेतीबाड़ी जिहड़ा सै आहां दे सियाणियां लगाए हो ना, दादूआं दूदूआं आहां दे अंब
1: जी,
0: अज भी गुलाबो जी आहां खा करदे न, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो फलदार पौधे दिखा न्याणिया ही पालना पौधे, कोई भी चीज है लगाना तो आसान होंगी है ना, चटपट खड्डे खोदे कने फसाई ते, है ना?
1: बिल्कुल।
0: पर संभालना जेड़ा सा बड़ी मुश्किल होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल। कने हाँ जो इसकी संभाल जड़ी है जालू तो पौधे लाते तो करना बड़ा जरूरी है, ता ही हाँ जो कुछ भी काम का जड़ा सा फायदा मिलता है ना
0: जी।
1: फलदार पौधे की जानकारी जी है सारे ते पहले लेना जरूरी है कि कुछ इलाके वास्ते जड़े से कौन दी किस्म तो हाँ पौधे जड़ी से बने न। इस दे सोगी ही हाँ ध्यान रखना है कि पौधे लाने के बाद सिंचाई तिसदी टेमे टेमे पर जड़ी से होना चाहिए है। खाद कने उर्वरक तो हाँ पाते तो गोबर दी खाद कने कंपोस्ट जड़ी की जरूरी उर्वरक होंदा है तिदे विच पौधे विच पाना जरूरी है
0: जी।
1: इस दे सोगी ही ऐसी जगह तो हाँ पौधा लाना है जिथु धुप कने हवा दोनों ही जड़ा से होन। पौधे जो पर्याप्त धुप कने हवा जड़ी से खुली मिलती है ता ही तिसकी बढ़वार जड़ी से अच्छे तरीके ने होंगी है ना
0: जी जी।
1: इससे सोगी यहाँ ध्यान रखना है कि निराई गुड़ाई टाइमे टाइमे पर तो हाँ तिस पौधे की करनी है। कने खरपतवार हटाई करिए मिट्टी जो जड़ा से हमेशा कोशिश करनी है कि मिट्टी जड़ी ऐसा सेट ना हुआ है ना, नरम ही रहे मिट्टी मतलब।
0: जी गुलाबो जी दिखा हाँ दे मते सारे किसान जड़ा सा फलदार पौधे की खेती बाड़ी करी के आज अच्छी खासी ओननी जड़ा सा कमा देन, है ना
1: जी।
0: तो कह के दिखा ये जड़ा सा फसल सीधे आर्थिकी कने जुड़ी होंगी, कने फ्रूट जड़ा सा मांग बाजारे च ज्यादा रही, कने मूल भाव भी जड़ा सा बदिए कने बांका मिली आंदा, है ना
1: जी।
0: कने काम करने ते पहले कोई भी है तो हाँ ये जरूर बोल देन कि तुहां अपने नज़दीकी जेड़े ब्लॉक ऑफिस होइए तिथु तुहां संपर्क जरूर साधना है, उत्थी ते जड़ा सा अच्छी किस्मां दे पौध जड़ा सा लैने न, है ना?
1: बिल्कुल। कने इस दे सोगी ही पौध लाने ते बाद तो हाँ ये भी ध्यान रखना है कि कीट कने रोग तुहाड़े पौधा पर तो नहीं लग गया है ना।
0: हाँ जी, हाँ
1: जे
0: जी।
1: अगर कीट कने रोग लगता है तो हाँ ध्यान रखना है कि पौधे जो कीड़े ते कियां बचाना है कने ताई जड़ा से विशेष ध्यान देना है कि जैविक रूप ते या फिर उचित कोई भी दवाई तुहानू लगती है तो शायद इसका प्रयोग तो हाँ करना है।
0: जी
1: इसदे सोगी ही इसकी छंटाई करना टेमे टेमे की जरूरी रहती है ना। कई बार कोई टहनी जी सुकी आती है या फिर कमजोर पी आती है कोई टहनी इसकी जी कटाई बड़ा जरूरी होंगी है। इसदे सोगी ही अगर छोटा पौधा है थोड़ा तो इसजो सारा तो हाँ जरूर देना है ताकि सह जड़ा सह मिट्टी च ना पोए कने तिजो नुकसान ना होए ना। तो ये थोड़ी गल्ला जड़ियाँ सह ध्यान दे विच रखनियां ने कने अपना कोई भी काम तो हाँ करदे न ते दे विच जड़ा सह लाभ लेना है ना
0: जी। तो फिर ते ले चलदे न अपने श्रोताएं रौनक मेले पा है ना
1: जी,
0: सुनांदे ने एक प्यारा दया लोक भेंट।
2: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही? इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
3: Inspiration built into every arrival. This may drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa.

0: आओ इस प्यारे दे मिठे दे लोक भजन कन्नै यहां दा कार्यक्रम दा बेला ओ इत्थे संपन्न होदा। जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर होरां, प्रस्तुति जेड़ी असें जतेंद्र पाल होरां दी। कन्नै हुण अपने टियाले दे लोके बाओ
1: कन्नै गुलाबो जो दे अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद, जै हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
1: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
1: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं.
2: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with a host of union ministers and several chief ministers from BJP-ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has sought support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, both having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. Our correspondent reports VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening or tomorrow. In another political development, the state BJP president Nayinar Nagendran has clearly said that the party gracefully accepted the election results. Interacting with the media, he said that the BJP does not wish to align with TVK in any way. Somnath Amrit Parv will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan, Somnath. Speaking to the media, Gujarat Minister Jitu Bhai Vaghani said the Prime Minister will lead a 1-kilometer-long mega road show from the Triveni helipad to the statue of Veer Hamirji Gohil. Prime Minister Modi will also perform the Kumbha Abhishek, Dhwaj Puja and Mahapuja at the Somnath Temple. Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu has informed that the final investigation report into the tragic crash of Air India Flight AI-171 is in its concluding stages and is expected to be released within a month. Speaking to reporters on the sidelines of the Aircraft Leasing and Financing Summit at GIFT City in Gandhinagar today, the minister stated that the Aircraft Accident Investigation Bureau is conducting a thorough and transparent probe. Defence Minister Rajnath Singh today said that the empowerment and security of the country is not limited to the protection of borders, but is connected to the security of society, environment and citizens. Addressing an event on 10 years of Tiranga Mountain Rescue with Indian Army in New Delhi, the minister underlined that an empowered India is one where borders are secure, communities are confident and the protection of every life is ensured in times of disaster. India and Singapore have stressed the importance of bilateral cooperation in countering terrorism as strategic partners. The fifth meeting of the Joint Working Group on Combating Terrorism and Transnational Crime between India and Singapore was held in New Delhi yesterday. The Joint Working Group unequivocally and strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and reaffirmed the principle of zero tolerance towards terrorism. Bulgaria's parliament today formally approved Rumen Radev as the new prime minister in a bid to end political instability and spur economic development in the EU member country. India's Simranjeet Kaur advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. Simranjeet defeated her Chinese Taipei counterpart Feng Yuzhu 6-0 in straight sets in the quarter-final. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have won the toss and opted to bowl against Delhi Capitals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई बहन कने होर जितने भी हाड़ी श्रोते हैं तेना सबनी जो गुलाबो दी तरफा ते एक बारी फिर ते राम राम कने दिखा किसान साथियों तो अंजो पता है कि आज मेरे सोगी लोक का भाऊ है। लोक का भाऊ जी तो अंजो भी राम राम नमस्कार।
1: राम राम गुलाबो जी कने जितने भी श्रोता इस वेले टियाले ने जुड़ी उन कने तेना दा अपना कार्यक्रम किसानवाणी जेड़ा सै छेती सत बजे के 10 मिनट पर होंदा पहले जेड़ा सै छेती पर होंदा है ना
0: जी बिल्कुल।
1: अहां दे किसान भाइयां जेड़ा सै इस कार्यक्रम दी नियाल पर रहंदी है क्योंकि इस कार्यक्रम च अहां उन्हां ताईं जेड़ा सै जानकारियां होईयां भेंट वार्ता दा अंक स्थानीय सब्जी मंडी दे थोक मोल भाव मौसम दी जानकारी कने कुछ एक मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत भी जेड़ा सै लेके आउंदे है ना
0: जी बिल्कुल। लोक भाव
1: अजकल जेड़ा दिखा गुलाबो जी अहां दा किसान जेड़ा सै मुख्य फसल अहां दी कणका दी जेड़ी है उस आयो जेड़ा सै बटोलने दे कम्मे च जेड़ा सै अपने खेतां च जेड़ा सै लग्या है ना
0: जी।
1: कने दिखा अंबर भी एक ता डरा करदा है अहां दी अगर निचले क्षेत्रां दी गल करिए ता उत्थी ता लोग जेड़ा सै लगभग गाई गुई के बेले होई है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पर अहां दे जेड़े उच्चे पर्वतीय क्षेत्र न जिथी अगर अंते ना लेट पकने वाले बी बाय उन ता सै ली कणका जेड़ा सै पक्का करदी है ना
0: बिल्कुल। कने दिखा ओला ओला जेड़ी सै दिन ब दिन कणक पका ही कर दी है लेकिन हाँ जो कुछ एक छोटी छोटी गल्ला ने जिन्हों का हाँ जो ध्यान रखना जरूरी है। दिखा अली पिछले हफ्ते बरखा पई है ना लोग तो जड़ी जमीन है तिच नमी ज्यादा आती है तो जलू अह कणक की बढ़ाई लगते तो जड़ा समेत जड़ी से हाड़ी कणक जड़ी से पटुई होती
1: है
0: जी बिल्कुल। कने मिट्टी चली आती कने ये जड़ी मिट्टी है हाँ जो फिर अंत तक जड़ी से तंग करी है तो हाँ ध्यान रखना है कि हाड़ी जड़ी दराटी है सै जड़ी से तेज धार वाली हो है कने अगर जे तेज धार नहीं है तो तुसा तो जो पहले ही तैयार जड़ से करके रखना है ताकि तो जो ये जड़ से नुकसान ना हो है ना
1: जी। गुलाबो जी दिखा जोधा राम टकरी या मिंजो कल
0: अच्छा
1: तिनी लियो नोआ खटर ले अगर चलिया मैं लग ता चले तू हां बोलया रा मैं बढ़ाई चलिया बढ़ाई अच्छा। के बढ़नी तो कणक ता तिदी सोई हो अपने पुराने दराटियां उस पर निर्भरता होना चाहिए है ना
0: बिल्कुल। हां जो गुआना कोई भी चीज नहीं चाहिए
1: बिल्कुल
0: नोईया तकनीक सोगी हां जो पुराने जेड़े हाड़े बी हो ये क्या बोलते हाँ औजारा की गल करिए पुराने जड़े कोई भी औजार होंगे है सभी हाँ जो रखने ना पुआल जे कई बार होंगे कि हाँ जो जरूरत पी सकती है जी तो गलाया कि तूफान पिछले दिनों च आया हा कने हाड़ी कणका की फसल जी सै लेट गई हुई है ना
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो जो बढ़ना एक मुश्किल गल होंगी कने सै कटरे ने कभी भी जी हथे नहीं होंगी है ना
1: जी बिल्कुल। दूसरी गल दिखा गुलाबो जी एक गल भी है कि यहाँ के जेडे किसान कुछ किसानों के खेतर तो सड़क बखे होंगे शायद थ्रेशिंग बड़े अच्छे तरीके कर लेंदे कने मतलब कुछ घंटिया ची वेले हो जाते
0: बिल्कुल।
1: पर कुछ कहां दे किसान भाई ऐसे भी होंगे तिना दा दिखा खेती बाड़ी दो खड नालू टप्पी के तिना पूरा बोझा लेके सह अपनी कणक लियानी कई तो ऐसे भी है किलो किलोमीटर तक तिना ढोई के लियानी है कणक है ना तो तिथियों तो समय लगना ही लगना है ना
0: बिल्कुल।
1: तो दिखा दुए पाहे अंबर नहीं दिया था बारी तो दुए पाहे जोधा राम बोला था बोले रहा मैं फटोफट गाय लैनी है बोलिया
0: बिल्कुल
1: मैं गाय तो लैनी है पर टुआनी की है बोले गुलाबो यो गलाई लंगा ली खरी है बोले जंगा दी मैं दिखी लिया तो पूछी लिया गुलाबो तो बेली हो
0: बिल्कुल। लोग क्या भाऊ दिखा ये कोई नोई गल नहीं है दिखा हाँ पहले हाड़े जेड़े पहले बुजुर्ग होंगे है ना यही काम करते है किसे ज्वारियां देंदे है एक ही दुए ने है ना जी। अज तेरी बारी है अज मिंजो सोगी चलना कने दस दस बारह बारह जड़े से बंदे जड़े से किट्ठे हो जाते हैं इक्कीस दे सोगी है ना
1: कने कम्मे दा पता भी नहीं चलता
0: बिल्कुल पता नहीं चलता हसते खेलते कने तिना कम्मा दा जड़ा मजा आता है ना सै कुथी नहीं आता है ना कने हाँ जो कोशिश यही करनी है कि हाँ ग्रां वासी है कने ग्रां दे विच रहंदे ने कुथी भी अहां रहन हाँ जो आपसी मेल मिलाप जड़ा सै रखना चाहिए है कने इक्की दुए दे कभी भी जड़ा सै ईर्ष्या जड़ी से नहीं करनी चाहिए है ना कुछ की तुहां जो लाभ मिलता है फायदा मिलता है तो हाँ तिसदा फायदा अपू ही ना ले करी तो हाँ होरना तकर भी पजाने की कोशिश करनी है कि हर कोई जड़ा सा फायदा लै कने हड़े देश का हड़े प्रदेश का जड़ा सा चहुमुखी विकास जड़ा सा हो सके
1: बिल्कुल। तो गुलाबो जी दसा तुहा यह बारी बोले तुहा मैल मूल कुछ नहीं है पाया कने बोले प्राकृतिक तरीके कने कणक की फसल ले तो खरी होई
0: लोग के भागो दिखा ना हुन कोशिश तो करना ही पौनी ना हुन है ना दिखा समय की मांग जड़ी सा बोला करती है कि यहाँ कुछ पिछले कुछ एक साल जड़ा सा खूब भरी भरी करी जड़ा सा रसायनिक खादा ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ,
1: ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ
0: ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾੜੀ ਸਿਹਤਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੋਗੀ ਸੋਗੀ ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਭੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਕਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਬਾਹਰੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਖਰੀਦੀ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ।
1: ਕਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਗੋ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਏ ਦਾ ਗੋਬਰ ਕਨੇ ਗੋ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਮਿਲੀ
0: ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਨੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਥੀ। ਜੀ ਹਾੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਦੇ ਸੋਗੀ ਹੀ ਆਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੇ ਜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ
1: ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਤੁਸਾਂ ਪਾਈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਦਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ,
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵਧੀਆ
0: ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਹਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਝੁਕਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਇਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਂਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਜੈਵਿਕ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ।
1: ਜੀ ਠੀਕ ਲਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੋ ਜੀ ਦੇਖਾ ਤੁਹਾਂ ਸੂਨੇ ਲਾਗਤ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕਿਸਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਹੀ ਸਹਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕੇ ਲਹਿਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਆਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਉਪਜਾਊ ਬਣੀਓ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸ਼ੂਨੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਅਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਸਥ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸੋਚਾ ਹੈ ਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ।

0: किसान साथियों, ये प्यारा दे लोक जनकार तुहां तक पुजाया कने आशा कर देन। गुलाबो जी, अहां दे किसान स्रोतें पसंद भी आया होना है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: ता हुण कार्यक्रम च गां बद्दे होए बेला ओदा भेंट वार्ता दी अंक दी जानकारी सांझा करने दा है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: ता देर नहीं करदे कने सुणांदे ने भेंट वार्ता दा अंक।

0: पशुआं ते कियां हां जिहड़ा उत्पादन हां ज्यादा लैणा कने तिन्हां दी क्षमता जिहड़ी सै हां कियां बढ़ाई सकदे हन। पर डॉक्टर साहब मधु सुमन संभियाल जिहड़े सै अज दे अहां दे टियाले पर खास परौणे हन, तां डॉक्टर साहब जी तुहां दा टियाले पर स्वागत है जी।
1: धन्यवाद जी।
0: तां डॉक्टर जी सबसे पहला जा ए दस्सा कि संतुलित पशु आहार जिहड़ा सै क्या चीज है, कने इस ते पशु जो उत्पादन बढ़ाने जिहड़े सै कई जरूरी है।
1: संतुलित पशु आहार पशु के उत्पादन बढ़ोतरी और प्रजनन क्षमता के लिए काफी आवश्यक है। संतुलित आहार का मतलब है कि उसमें ऊर्जा के स्रोत जैसे कि चारा और अनाज और प्रोटीन के स्रोत जैसे खलें, विटामिन और खनिज तत्व अगर सही मात्रा में मिले तभी पशु का उत्पादन सही रहता है। अगर आहार असंतुलित है तो पशु की बढ़ोतरी भी कम होगी और दूध की मात्रा भी उसकी कम होगी।
0: तो जी कि अहां गल करिए जी दस्या कि संतुलित आहार अरे अहां दे दुधारू पशु हैं प्रति किलो क्या दूध दे हिसाब करना जरूरी होता या हर कुसी पशु एक बराबर ही देना पौंदा?
1: नहीं, सभी पशुओं का दूध के हिसाब से उम्र के हिसाब से ये विभिन्न विभिन्न होता है।
0: हाँ जी।
1: तो जैसे कि अगर 2.5 किलो दूध के करीब अगर कोई पशु दे रहा है तो उसको 1 किलो दाना मिश्रण देना आवश्यक है और 10 से 15 किलो के करीब हरा चारा दें उसको।
0: हाँ,
1: और साथ में खनिज तत्व देना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: पशु को तभी उसकी उत्पादन क्षमता को हम बना सकते हैं, नहीं तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी।
0: जी गल करते हैं जी कि अक्सर हाँ दे पशु पालक भाइया पशु पाले हुए हैं कने गल करते हैं दूध दुधारू पशु जड़े हैं जिया कि कई जड़ा सा दूध पतला होंदा कई गाय में दूध जड़ा सा गाढ़ा होंदा तो जिया कि गल करिए फैट जिसकी बसा बोलते हैं एक कितनी दी मात्रा जड़ी सै होना चाहिए अगर दूध पतला तो इसको गाढ़ा हाँ जड़ा सा किया बनाई सकते हैं क्या खिलाना पिलाना चाहिए पशु?
1: दूध में जो फैट होता है वो हर नस्ल का विभिन्न विभिन्न होता है।
0: हाँ
1: अगर हम जैसे बात करें होस्टिन फ्रीजियन जो गाय का दूध होगा उसमें फैट जर्सी के अगर तुलना में कम होता है, पर हम आहार संबंधी भी हम कुछ उसमें बदलाव ला सकते हैं जिससे कि उसमें फैट बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो दाना मिश्रण की मात्रा अगर पशु के आहार में बढ़ाएं और साथ में हम लोग बाईपास फैट किसान भाई बहन उसको बाईपास फैट खिला सकते हैं 100 से 150 ग्राम की मात्रा में।
0: हाँ
1: उससे भी दूध में फैट बढ़ाया जा सकता है। अगर बाईपास फैट नहीं लेना है तो वनस्पति तेल जो घर में उपलब्ध होता है
0: हाँ जी
1: वो भी पशु के जो दाना मिश्रण में 100 से 150 ml के करीब आप अगर उसको मिश्रित करें 100 से 150 ml के करीब ही उसको मिलाना है। अगर ज्यादा मिलाएंगे तो जो उसके र्यूमन बड़ा जो उसका पेट होता है उसके जीवाणुओं के लिए वो ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए 100 से 150 ml के करीब आप वनस्पति तेल लें उसको दाना मिश्रण में मिला के पशु को दे तो उससे भी फैट को बढ़ावा दे सकते हैं। और साथ में हरा चारे की मात्रा जो पशुओं को एटलीस्ट 20 से 25 किलो के करीब हरा चारा अवश्य दें।
0: हाँ
1: और
0: जी।
1: एक है कि पशुओं का जो दूध दूहने का अंतराल होता है वो 12 घंटे के करीब होता है, पर अगर जैसे कोई किसान भाई बहन है जो 6 बजे गाय को दूहते हैं और अगले दिन 7 बजे दूहे और फिर उससे अगले दिन 8 बजे दूहे तो उससे क्या होता है कि दूध की उत्पादन क्षमता भी उससे प्रभावित होती है, साथ में फैट भी प्रतिशत उससे प्रभावित होता है और साथ में स्थनीला रोग होने की भी जो है ज्यादा चांसेस हैं।
0: डॉक्टर साहब
1: कई बार जो गाय के या भैंस के दूध में क्या होता है रंग उसका लाल रंग हो जाता है, मतलब उसमें है कि उसका जो खून है वो मिल रहा है दूध में। तो इसके बहुत सारे कारण हैं पर एक कारण ये भी है कि खनिज तत्व आप उसको नहीं दे रहे हैं जिसको कि हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं बोलते हैं जो कैल्शियम होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है कि वो दूध की नली को बंद करने के लिए और जितने भी हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं खून की नलियां उनके लिए काफी आवश्यक होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं उसको खनिज मिश्रण देना शुरू कर दें। आप 50 ग्राम की मात्रा में खनिज मिश्रण दे तो देखना आप उस परिवर्तन हो जाएगा, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है तो नजदीकी जो पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें, पर आप अभी उसको खनिज मिश्रण देना शुरू कर दें उससे उसका जो रंग है वो परिवर्तन

0: सकते हैं। और दूसरा, जैसे आप बाईपास फैट जो है वो दे सकते हो गाय को, तो उससे भी फैट की प्रतिशत जो है उसमें दूध में बढ़ जाएगा।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, थनैला रोग है, तो जी थनैला रोग क्या ये जानलेवा बीमारी भी है पशु ताइए, या अक्सर जी दा इलाज संभव है?
0: थनेला रोग का अगर हम समय पे उपचार करें तो जानलेवा तो है नहीं है,
1: हाँ
0: पर
1: जी
0: अगर इसका इलाज सही से ना करें तो पशु के जो दूध देने वाली ग्रंथियां वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और पशु दूध देना बंद कर देता है। तो इसका एक तो है कि आप पशु को जो पोषण है उसमें कमी है,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: दूसरा साफ़ सफाई में कमी है। ये दो मेन कारण है थनेला रोग होने के। तो पशुओं के आहार में अगर कैल्शियम और खनिज तत्वों की कमी हो तो भी थनेला रोग हो जाता है। तो जितने भी दुधारू पशु हैं उनको जो खनिज मिश्रण है, खनिज तत्व है, वो जरूर दें। और साथ में दूध दुहने के बाद जो है पशुओं का, दूध दुहने से पहले और दूध दुहने के बाद पशुओं के जो थनों को अच्छी तरह से साफ करें, और
1: जी
0: साथ में जो बिछावन होता है पशुओं का वो भी
1: हाँ
0: साफ
1: जी
0: होना चाहिए। अगर पशु दूध दुहने के बाद एटलीस्ट 45 मिनट तक वो खड़े रहने चाहिए, बैठने नहीं चाहिए, क्योंकि जो
1: अच्छा
0: दूध की नली जो होती है खुली रहती है,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: दूध की नली से वो जीवाणु विषाणु अंदर चले जाएंगे और उससे वो संक्रमित कर देते हैं। वैसे तो जो गर्भवती पशु को 6 महीने से ही उसकी जो है डाइट जो है बढ़ाना जरूरी है उसको, पर अब ऐसा है कि अब इस समय आप 2 से 3 किलो के करीब उसको दाना मिश्रण दें और हरा चारा दें उसको, अच्छा सा हरा चारा दें। और साथ में जैसे कि पशु का प्रसव होने वाला होगा 2 से 3 दिन में पता चल जाता है उसमें, उस समय हल्का आहार दें। हल्का आहार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चोकर लें, जैसे 1-1.5 किलो आपने चोकर ले लिया, 1.5 किलो आपने दाना मिश्रण दे लिया, और उसमें कुछ खनिज तत्व और 500 ग्राम के करीब आप गुड़ डालें और थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के उसको दें। 3 दिन पहले, प्रसव होने से पहले देना है आपने, और तब देना है जैसे प्रसव होने के 2-3 दिन पहले देना है, और वो ही फीड आपने करीब 4 से 5 दिनों तक आपने उस तरह से देनी है गुनगुने पानी में मिला के। फिर जब 4-5 दिन हो जाएंगे उसके बाद आप जो नियमित दाना मिश्रण देते हैं, जैसे पैलेट फॉर्म में देते हैं, मैश फॉर्म में देते हैं, वो आप दे सकते हैं, जो नियमित दाना मिश्रण दें। तो जैसे ही प्रसव हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा, तो आपने उसको खनिज मिश्रण अवश्य दें, क्योंकि जैसे दूध देने पशु शुरू करता है तो उसके दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आप कैल्शियम बाहर से नहीं देंगे तो पशु बैठ जाता है या उसकी जेर अटक जाती है, थनीला रोग हो जाता है। तो खनिज तत्व 30 से 50 ग्राम के करीब आप उसके आहार में जरूर डालें, खनिज तत्व उसके आहार में।
1: जी तो डॉक्टर साहब जी जियां कि तुहां संतुलित आहार दे उपर भी जड़ियां दसा करदे हैं, तो कम लागत जड़ा अगर हाँ अपने पशुओं जो जड़ा से संतुलित आहार अगर अहां दे पशु पालक भाइयां करे अगर बनाना है तो कियां बनान सह करिए, तुहां दस्या भी है थोड़ा और दसा भी कम लागत बिच जड़ा सा कियां बना सकदे हाँ।
0: अक्सर हमारे किसान भाई बहन बोलते हैं कि दाने की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, तो पशु आहार में जो दाना मिश्रण होता है उसी की लागत में सबसे ज़्यादा होती है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: अब अगर हम दाना मिश्रण कम कर दें या कुछ इस तरह से हम पशु को खिलाएं कि दाना मिश्रण की कमी ना हो, तभी हम लागत को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए करें कि हरा चारा, जैसे बहुवर्षीय घासें होती है,
1: हाँ
0: जैसे
1: जी
0: संकर, नेपियर, बाजरा, गीनी घास होती है, अंजन घास है,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: पशुपालक उगा सकते हैं। तो उससे सारे साल हरे चारे की उपलब्धता हो सकती है। और जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, वो भी उगा सकते हैं।
1: हाँ जी
0: तो और हरे चारे को साइलेज के रूप में संरक्षित कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि हरा चारा सारा साल मिलेगा।
1: हाँ जी
0: और अगर पशु, अगर बरसीम होगी, जई होगी, तो ऐसा है कि 5 किलो अगर बरसीम और जई अगर किसान भाई बहन खिला सकते हैं तो 1 किलो दाना मिश्रण कम कर सकते हैं।
1: हाँ
0: तो उससे
1: जी
0: क्या है कि पशु आहार की लागत जो है कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हरा चारा उगा पाएंगे किसान भाई बहन, उतना ही लागत कम हो जाएगी। और साथ में जो हरा चारा होता है उसमें विटामिन ए होती है, जो कि पशु के प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
1: हाँ जी
0: दूसरा ऐसा कर सकते हैं, जैसे हरा चारा को कटाई करके, जैसे चैफ कटर में छोटे छोटे हिस्सों में काट के, और उसको सूखे चारे के साथ, जैसे बीट स्ट्रॉ हो गई, उसके साथ भूसे के साथ मिक्स करके पशु को खिलाएं, तो वो भी, उससे भी लागत कम कर सकते हैं।
1: तो यही जानकारी संतुलित पशु आहार जेड़ा सा बड़ा जरूरी है ना,
0: जी
1: क्योंकि हरा चारा जेड़ा सा पशुएं रलिया मिलिया अजकल जो भू ही पाते रहिए सुखा तो फिर ही नहीं खाते, मेरी गाँ मैं एक दिन पाँदा रहा दूए दिन फिर पाया तो नहीं खादा दिन है
0: नहीं
1: ना,
0: खाते बिल्कुल।
1: जालू थोड़ा दे बीड़ा दे मैं बड्डी क्यारा चारा लौंदा सह रलाई मलाई के पाया तां बड़े चाव ने तिना जड़ा सह खादा
0: बिल्कुल
1: ना,
0: खाता है
1: दुधे पर
0: फिर,
1: भी
0: जी दूधे पर भी असर जड़ा से पौंदा
1: पौंदा
0: है।
1: है ना।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये डॉक्टर और अहाँ दे ट्याले पर आए हे मधुसूमन है ना,
0: जी
1: इन्हें
0: बिल्कुल
1: जड़ा सह संतुलित आहार पर अपनी बड़ी बढ़िया कने बाकी जानकारी दी, कने इसके बाद जड़ा सह बेला हुआ गुलाबो जी स्थानीय

0: सब्जी मंडी कांगड़ा दे थोक मोल भाव की जानकारी अपने किसानों ने साझा करने का है ना। तो सब तो पहले गल करते हैं आलू की किसान साथियों, तो आलू जरा भा रहे अज मंडी 8-10 रुपये प्रति किलो, कने प्याज जड़ा ऐसा 18-22, टमाटर जड़ा तुहदा 12-16, कने लहसुन जड़ा ऐसा 100-110, कने अदरक जड़ा ऐसा 80-90 रुपये प्रति किलो। गुलाबो जी गल करिए शिमला मिर्च की, तो शिमला मिर्च का जो भा रहे अज मंडी 14-16 रुपये प्रति किलो। अरबी तुहानी जी किसान साथी 40-50, खीरा जड़ा सै 10-15 रुपये प्रति किलो, मटर जड़ा सै अज 50-60 रुपये का भा तीस मिला मंडी, फुल गोभी जड़ा सै 22-25 रुपये प्रति किलो के हिसाबे ने अज मंडी रही, कने बंद गोभी जड़ा सै 8-10 रुपये प्रति किलो किसान साथी, कने बैंगन 15-20 रुपये प्रति किलो। गल करिए कद्दू की, तो कद्दू 10-35, कने मूली 10-20, कने टींडा जड़ा सै 35-40 रुपये प्रति किलो, पालक तुहांदा किसान साथी 25-30 रुपये प्रति किलो, हरी मिर्च 35-40, कने धनिया तुहांदा 30-35, कने तोरी भी जड़ा सै 30-35 रहा, कने घीआ तुहांदा 10-12 रुपये प्रति किलो, करेला जड़ा करेले भाव मिला अज मंडी तुहांदा 15-20 रुपये प्रति किलो किसान साथीओ। कने फ्रैश बीन की गल करिए, फ्रैश बीन का भाव तुहांदा 35-40 रुपये प्रति किलो, गाजर 20-25, मशरूम जड़ा सै 160-170 रुपये प्रति किलो। कने हुण फलां की गल करिए,
1: जी बिल्कुल अगे हाँ फलों की गल करनी, कने फलों के भाव भी दसने ने। सेब की गल करिए, सेब अज कांगड़ा सब्जी मंडी के विच जड़ा सा 120-150 रुपये प्रति किलो रहा है, केला 40-50 रुपये प्रति दर्जन, अनार की गल करिए 120-150 रुपये प्रति किलो, अमरूद 80-90 रुपये, मौसमी जी 60-70 रुपये, पपीते की गल करिए किसान साथी 40-50 रुपये प्रति किलो रहा है, संतरा 100-110, खरबूजा 25-40 रुपये, तरबूज 14-18 रुपये, अंगूर 120-130 रुपये, पलम की गल करिए किसान साथी 40-50 रुपये प्रति किलो, अंब जड़ा सै 70-80 रुपये प्रति किलो कांगड़ा सब्जी मंडी के विच जड़ा सै अज बिकया, नींबू 90-100 रुपये प्रति किलो, कीवी पर पीस जड़ा सै एक पीस जड़ा सै 30-35 रुपये, माल्टा की गल करिए 130-140 रुपये प्रति किलो रहा है। इसके सोगी ही किसान साथी अहां कार्यक्रम के बीच अगे बढ़ना, कने अगे देनी है मौसम की जानकारी है ना
0: जी।
1: तो सारे तो पहले कांगड़े की गल करिए, कांगड़ा का अज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री, कने न्यूनतम जड़ा सा 18 डिग्री रहा है। पालमपुर का अज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री, कने न्यूनतम 14 डिग्री रहा है। ऊना की गल करिए, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, कने न्यूनतम 21 डिग्री रहा है। चंबा का अधिकतम तापमान 21, कने न्यूनतम 12 डिग्री रहा है। मंडी की गल करिए किसान साथी, 24 डिग्री अधिकतम, कने न्यूनतम रहा है 16 डिग्री। कने ए थी मौसम की जानकारी। कने किसान साथी, अगले आने वाले 2 दिन जड़े से मौसम मिला जुलाई रहने की संभावना जी से बनी है, जरूरत है हाँ जो जागरूक हो के काम करने की है ना
0: जी।
1: हाँ जागरूक हो के काम करना, कोई भी काम कर देना। कने कार्यक्रम के बीच फिर अगे बढ़ना, कने सुनना एक लोकगीत
0: जी।

साथियों, इसी प्यारे दे मिठे दे लोक गीत कन्नै अहां दा टियाले दा वेला भी जिहड़ा सै होआ दा जाने दे पहले दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दित्ता सुरेंद्र कपूर होरां, प्रस्तुति जिहड़ी है सै जितेंद्र पाल सिंह होरां दी। तुहां सुणदे रहे आकाशवाणी धर्मशाला कन्नै अहां दुनिया दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर OPS व NPS कर्मचारियों के बीच DA को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा श्रृंखला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इस बीच प्रदेश की 3,754 पंचायतों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे। किन्नौर जिला में आज विभिन्न पदों के लिए कुल 613 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि लाहौल स्पीति में 67 नामांकन भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
2: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ओपीएस को कर्मचारियों के हित में बताकर लागू किया, लेकिन आज पुरानी पेंशन स्कीम अपनाने वाले कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस तरह का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओपीएस और एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर बनाए गए इस भेदभाव को तुरंत समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों को समान दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा हमेशा कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी कर्मचारियों की आवाज को मजबूती के साथ उठाती रहेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं के महत्वपूर्ण प्रतीक भी हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के प्राचीन बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए और देश व प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने हिमाचल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल 9 मई को प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा श्यंकला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष व उपायुक्त किरण भड़ाना ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दाचा श्रृंखला सड़क पर बर्फ हटाने और मार्ग बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सड़क अब डबल लेन के रूप में तैयार है, जिस पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहन चल सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित की जाएगी। पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी मौसम और सड़क संबंधी एहतियात और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। दाचा श्रृंखला सड़क मार्ग खुलने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में

0: हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
1: जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न तो आर्थिक दृष्टि है और न ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा शिंकुला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 387 प्रस्तुत है प्रसारण के 90 वर्ष पर श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी से डॉक्टर हुकम शर्मा जी की बातचीत, जिसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष, हम सभी जानते हैं कि एक बहुत लंबा सफर रेडियो ने तय किया है और 90 वर्षों के इस इतिहास में हमारा श्रोताओं के साथ और आकाशवाणी से जुड़े हुए जितने भी जो कलाकार लोग रहे या किसी भी तरह से जो आकाशवाणी से जुड़े रहे, उनके निरंतर प्रयासों से आज हम एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं और प्रसारण जो है आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हमें लगता है। 90 वर्षों के इतिहास में क्या कुछ हमने देखा, इसी संदर्भ में हमारा ये प्रयास रहता है कि आकाशवाणी से जुड़े हुए जो वरिष्ठ कलाकार रहे हैं, हमारे वरिष्ठ श्रोता रहे हैं, उनके अनुभव साझा करें हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और आज एक ऐसी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा कहें या उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, आपका जाना पहचाना नाम है हम सभी का, श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आप रहे हैं। और शायद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इससे भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाना हो, ऐसी ही शख्सियत हैं श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी। आप कला जगत में वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, शिमला के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और उन वरिष्ठ रंगकर्मियों में जो आज शायद सिने जगत में भी जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ भी आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। नाटकों की अगर हम बात करें, आकाशवाणी के ए ग्रेड के नाटक के कलाकार आप हैं, बतौर कहानीकार और बहुत से नाटकों का आपने लेखन भी किया है। जोशी साहब, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद।
2: प्रसारण के 90 वर्ष पर आप क्या कहेंगे?
3: देखिए, 90 साल की, पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ पूरे आकाशवाणी के जितने भी सदस्य हैं उनको। मैं 1956 से, 1955 में ये स्टेशन खुला था, 1956 या 57 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक कैजुअल अनाउंसर रहा था, तब हमें केवल 10 रुपए मिलते थे। अब 90 वर्ष में क्या क्या रेडियो ने किया है, इस बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मोदी के आने के बाद मन की बात एक प्रोग्राम ऐसा है जो बहुत लोगों को भाता है और बहुत सारे लोग इसको सुनते भी हैं। दूसरा, लोक संगीत के लिए बहुत बड़ा काम किया है आकाशवाणी ने। लोक संगीत मर जाता यदि आकाशवाणी ना होता, तो आकाशवाणी की वजह से लोक संगीत आज जीता है, जागता है और लोगों को बहुत पसंद आता है ये प्रोग्राम। दूसरी बात जो क्लासिकल की है, वो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि क्लासिकल में आकाशवाणी का कार्यक्रम तो अच्छा है लेकिन उतना मन भावन नहीं है जितने मन भावन प्रोग्राम और हैं। तो क्लासिकल संगीत को बढ़ावा देना, किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, ये आकाशवाणी को सोचना होगा।
2: आपने कहा कि 1956-57 से आप आकाशवाणी शिमला से जुड़ चुके थे बतौर कैजुअल अनाउंसर। तो देखिए, जो आकाशवाणी का जो उद्घोषक होता है, वो तो एक तरह से हम कहें कि आकाशवाणी का उसको चेहरा भी कहा जाता है। तो क्या क्या अनुभव रहे आपके उस दौर में, किस तरह से आकाशवाणी चलता था? हम आकाशवाणी शिमला की ही बात कर लेते हैं यहाँ।
3: मुझे 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था सवेरे का, कहते थे कि आप रेडियो स्टेशन चालू करोगे तो मैं ही आता था, एक इंजीनियर होता था और एक पियन होता था, हम केवल 3 व्यक्ति होते थे। और ये आकाशवाणी तब होता था जहाँ आजकल विधानसभा है, विधानसभा के जो निचली मंजिल है उस पर ये आकाशवाणी हुआ करता था। मैं ये कह सकता हूँ कि उन दिनों मैं राजा होता था, 150 रुपए मुझे मिलते थे 15 दिन के, 10 रुपए रोज। और मैं कॉलेज में जाता था, कॉलेज वाले कहते थे यार जोशी तू कुछ खिला दे हमको, और मैं उनको खिलाता पिलाता रहता था। काफी, मैं एक तरह से समझ लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा होता था, 150 रुपया खर्च नहीं होता था उस समय में। आज तो 150 रुपए की कोई वक़्त ही नहीं है, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि 150 रुपया बहुत होता था। हम गेंदामल हेमराज के यहाँ जाते थे और वो बुना लेते थे, चेक मिलता था तो हमारा बैंक में अकाउंट तो होता नहीं था, तो बस हम गेंदामल हेमराज को 8 आने देते थे या 1 रुपया देते थे, पता नहीं 149 रुपये वो हमको पकड़ा देता था।
2: जी,
3: तो 149 रुपये में हम खूब मस्ती करते थे, आनंद लेते थे। और हमको ट्रेनिंग दी थी प्रतिमा पुरी ने। प्रतिमा पुरी आकाशवाणी की वो कर्मचारी हैं जिनका पहले पहले मुखड़ा दूरदर्शन ने देखा था।
2: जी,
3: दूरदर्शन में जब पहले दफा आई थी तो प्रतिमा पुरी आई थी समाचार पढ़ने के लिए। प्रतिमा पुरी यहाँ से दिल्ली चला गई थी जब उनकी शादी हुई थी उसके, तो दिल्ली चली गई थी। दिल्ली में जा करके उन्होंने ये कार्यक्रम देना आरंभ किया था।
2: तो उस दौर में और भी कोई बहुत से लोग रहे होंगे। सुबह तो आपने कहा कि आप 3 लोग ही आते थे मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू करने के लिए।
3: हाँ हाँ
2: लेकिन क्योंकि उसके अलावा भी जो अगले ट्रांसमिशन चलते थे, आपने कहा जैसे कि लोक संगीत के लिए बड़ा योगदान रहा और शायद हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के लिए भी, मैं मानता हूँ कि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा प्रयास है कि जीवंत रहे ये बोलियाँ भी।
3: हाँ
2: तो
3: ठीक
2: उस
3: है।
2: दौर में भी कुछ ऐसा चलता था क्या?
3: हाँ, तब SSS ठाकुर हुआ करते थे, वो प्रोड्यूसर थे शायद यहाँ, और हिमाचली प्रोग्राम उन्होंने आरंभ किया था सबसे पहले। उस वक्त खेमराज गुप्त होते थे और कलावती होती थी, विजय सरस्वती होते थे, दिवाकर दत्जी होते थे और भी बहुत सारे लोग होते थे, मतलब विजय कुमार पंडित होते थे और अमरनाथ, दो अमरनाथ होते थे, दोनों के दोनों यही थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता था, इकट्ठे बैठ के करते थे वो प्रोग्राम, सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और एकत्र होकर के वो प्रोग्राम करते थे। उस वक्त काली अचकन पहना करते थे और चूड़ीदार पजामा पहनते थे सारे लोग सिवाय महिलाओं के, और प्रेमलता जी होती थी हाँ
2: जी,
3: प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। और जैसा आपने कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो हिमाचली फोक है उसको अगर बढ़ावा दिया है तो आकाशवाणी ने दिया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था, बहुत आनंद आता था उस प्रोग्राम को सुनने में। अब प्रोग्राम तो अभी भी अच्छे होते हैं, लेकिन उस वक्त का हमारा जो ध्यान उस तरफ चला जाता था वो बहुत ज़्यादा जाता था। हम उस वक्त बच्चे होते थे, एक तरह से जवान होते थे, और जवानी में हम प्रोग्राम को सुनते थे
2: जी।
3: और हमको बहुत अच्छा लगता था उस वक्त।
2: तो जोशी जी, आपने कहा कि 150 रुपया मिलता था, एक तो उस वक्त के आप एकदम से शहनशाह

0: होते थे कि 150 रुपये आपके पास है तो कॉलेज में जाके, कॉलेज में तो हीरो थे ही, लेकिन जब आप आम लोगों में जाते थे तब भी तो लोग आपसे मिलते होंगे कि ये है वो जो रेडियो में बोलते हैं, तो वहां भी कुछ अनुभव आपके रहे?
1: हाँ, बहुत सारे रहे। एक अनुभव मैं सुनाता हूँ। जब हमको आज़ादी मिली थी, जब ये स्टेटहुड मिला था हमारे को,
0: जी
1: तब इंदिरा गांधी जी आई थी, तो सतीश गर्ग होते थे यहाँ पर पैक्स।
0: जी
1: सतीश गर्ग ने कहा कि तुम अनाउंसमेंट करोगे वहाँ से,
0: जी
1: जिंदा अनाउंसमेंट, तो मतलब लाइव देना था। तो इंदिरा जी आई और आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई।
0: जी
1: मैं टका बेंच में बैठा होता। टका बेंच उस वक्त टका कहते थे, 2 पैसे का,
0: जी
1: 2 पैसे को टका कहते थे, इसलिए 2 पैसे लगते थे वहां जाने के।
0: टका बेंच पे जाने के दो
1: टका बेंच
0: पैसे
1: में 2 पैसे लगते थे, तो टका उसको नाम दिया गया था, क्योंकि वो 2 पैसे में आदमी अंदर बैठ सकता था। तो इंदिरा जी मेरे सामने खड़ी हो गई,
0: जी
1: मैं नर्वस हो गया बिल्कुल। और थोड़ी सी देर के लिए शायद आकाशवाणी में मेरे शब्द नहीं निकले होंगे। मैं खड़ा हो गया और वो भी खड़ी हो गई, और आमने सामने हम दोनों के दोनों हो गए। और फिर जब वो बोलने लगी तब कुछ शांत हुआ, और मेरा मन जो अस्थिर हो गया था वो स्थिर हो गया।
0: जी जी हाँ, इतनी बड़ी हस्ती के एकदम से सामने आने पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा गौरव तो महसूस हुआ होगा कि आप आकाशवाणी का
1: हाँ,
0: वहां प्रतिनिधित्व कर रहे
1: तो
0: थे।
1: ये गौरव तो हमेशा रहा है। जब कभी भी मैं आकाशवाणी में आया हूं तो मुझे एक गौरव प्राप्त होता है, और इसीलिए मैं आकाशवाणी का कोई भी कार्यक्रम हो वो ठुकराता नहीं हूं, उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं।
0: जी, और जोशी जी, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के आप सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं, और इतने महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने के बाद फिर भी आप कला के क्षेत्र से जुड़े रहे, तो इन दोनों में एक तालमेल बैठाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ओर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं प्रशासनिक अधिकारी की, दूसरी ओर बतौर नाट्य कलाकार आप मंच पर भी एक बतौर रंगकर्मी कार्य कर रहे हैं, रेडियो के नाटकों में भी भाग ले रहे हैं, तो इन तमाम चीजों में आप तालमेल कैसे बिठाते हैं?
1: ये कहते हैं कि अगर वेयर देर इज विल देर इज द वे, जहां कहीं भी आप चाहते हो कि ऐसा हो तो हो जाता है, क्यों नहीं होता है। मैं जब आकाशवाणी में अमरूद का पेड़, एक मेरी बहुत मशहूर कहानी है, कहानी समझ लो, एक संवाद है अमरूद का पेड़। वो अमरूद का पेड़ कहाँ हुआ था? वो जोगेंद्र नगर में था,
0: जी
1: और जोगेंद्र नगर में मैं SDM होता। तो SDM होते हुए भी मैंने वो जो अमरूद का पेड़ लिखा, और लिखने पर उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, जोगेंद्र नगर वालों ने तो बहुत ही पसंद किया। और वो मैंने आकाशवाणी से दिया था, पहला प्रोग्राम जो दिया था है आकाशवाणी से, वो ये दिया था जब SDM में हो गया था। उसके बाद मैं खुद तो नाटक नहीं करता था, लेकिन मैं बहुत सारे को एड दिया करता था। जो कोई भी नाटक वाला आता था उसको एड दे देता था, मदद कर देता था, वित्तीय स्थिति उनकी सुधर सके इसलिए काम करता था। और इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। आकाशवाणी में मैं लगातार आता रहा।
0: जी
1: मैंने लगभग यहाँ के लिए 150 के करीब ड्रामे किए हैं, और 150 मैंने यहाँ पर ये नाटक लिखे हैं और वो दिए हैं।
0: जी
1: खासकर हम नहीं सुधरेंगे, उसकी मैंने पुस्तक भी निकाली, हम नहीं सुधरेंगे, और वो आकाशवाणी ने प्रसारित किए थे। और बहुत अच्छा मेरा संबंध आकाशवाणी के साथ हमेशा रहा है।
0: तो जोशी जी, एक प्रशासनिक अधिकारी को कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, लेकिन कला जगत से जो आप जुड़े रहे हैं, कला जगत से तो वही व्यक्ति जुड़ता है जिसके दिल में कोमलता हो, यानी कुछ ऐसी भावनाएं जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के मन में शायद कम हो सकती है, क्योंकि वहां आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, तो इन दोनों में तो कैसे आपने सामंजस्य बिठाया? कभी कभी ये सुनने को मन करता है कि बताएं आप हमें कि ऐसा कैसे हो गया कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी, एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार भी, एक बहुत प्रतिष्ठित नाटककार भी, ड्रामा आर्टिस्ट आपके द्वारा मुझे भी आपके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैंने जब भी देखा तो जिस भावनात्मक जो आपकी शैली ड्रामा में रोल करने की है, तो हमें तो कभी कभी हम तो खो जाते हैं स्वयं आपके जब आप डायलॉग्स बोलते हैं, तो ये सब कैसे हुआ?
1: देखिए, लोग ये समझते हैं कि कोमलता का अर्थ ये है कि वो बहुत वीक सा एडमिनिस्ट्रेटर है,
0: जी
1: ये मैं नहीं मानता हूं। कोमलता के साथ जब आपने कोई चीज लिख दी तो वो लिख दी, बस वो करनी है, हर हालत में करनी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने कठोर निर्णय भी लिए होंगे, लेकिन उनमें भावना ये रही कि क्योंकि मैंने लिख दिया है एक दफा, ये अवश्य होना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं जो नाटक भी लिखता हूँ या जो कुछ यहाँ करता हूँ वो दिल से करता हूँ। और पहले ज़माने में ये होता था कि 3 आवर्स होते थे, पहले दिन आप रिहर्सल करते थे, रीडिंग करते थे, दूसरे दिन रिहर्सल करते थे, तीसरे दिन रिकॉर्डिंग होती थी।
0: जी,
1: ऐसा प्रोग्राम होता था। यहाँ विजय सरस्वती होते थे, विजय सरस्वती के निर्देशन में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, पीसी जोशी होते थे, उनके निर्देशन में मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं, और इस प्रकार से हरेक के साथ मैंने काफी काम किया। विजय कुमार पंडित होते थे,
0: जी जी
1: वो डायरेक्टर होते थे नाटक के, तो नाटक मैंने उनके साथ भी किए हैं, हर एक के साथ किए हैं नाटक। तो मैं ये समझता हूँ कि कोमलता को आप ये ना समझें कि कोमल है इसलिए ये वीक है, ये वीक आदमी नहीं है। कोमल होने पर भी आप एक सख्त आदेश दे सकते हैं।
0: प्रसारण विधा से आप बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे, आपने क्या कुछ परिवर्तन देखे? आकाशवाणी शिमला की ही हम चर्चा कर लेते हैं। इस दौरान प्रसारण विधा में आकाशवाणी शिमला को लेकर आप क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरह से आकाशवाणी शिमला का सफर शुरू हुआ और अब कहाँ पहुँचा है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आकाशवाणी की अपनी बिल्डिंग है आज ये जो है। पहले कहाँ होते थे हम? विधानसभा में होते थे, विधानसभा से हम शिफ्ट किए यहाँ, शिफ्ट किए, और ये बिल्डिंग आपकी अपनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वजन हिताय वाला प्रोग्राम है आपका, वो हो चला हुआ है, और उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आकाशवाणी को चला रखा है।
0: जोशी जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और प्रसारण विधा से जुड़ी हुई जो तमाम आपने अपने जो विचार साझा किए, अपने जो अनुभव साझा किए, वो सभी जानकर बहुत अच्छा लगा। बहरहाल, आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रसारण के 90 वर्ष पर श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी से डॉक्टर हुकम शर्मा जी की बातचीत अभी आपने सुनी।
3: ...103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

पंकज उधास की आवाज में आपने ये गजल सुनी। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाई ये गजल।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

0: आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 9 अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
4: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो फिल्म राम लखन की कहानी जो है वो इस प्रकार है कि शारदा यानी राखी की शादी एक अमीर खानदान में ठाकुर प्रताप सिंह के साथ होती है और उनके दो बच्चे भी होते हैं। और ठाकुर प्रताप सिंह के पिता जो हैं वो अपने पड़ोसी बिशंभर यानी अमरीश पुरी और भानु यानी कि परेश रावल पर दया दिखाते हुए उन्हें अपने घर में रखते हैं और वो लोग पैसा वसूलने और चोरी का काम करते हैं। वो दोनों हस्ताक्षर में धोखा देकर सारी ज़मीन जायदाद जो है वो अपने नाम कर लेते हैं और इस प्रकार से कहानी जो है वो एक मोड़ लेती है कि शारदा के दोनों बेटे राम यानी जैकी श्रॉफ और लखन यानी कि अनिल कपूर जो हैं वो दोनों उनके बेटे होते हैं और राम जो है वो अपने भाई को भ्रष्टाचार से दूर रखने की भी कोशिश करता है। और कई सालों के बाद भी जो बिशंबर है वो गैर कानूनी कार्यों पर नज़र रखता है और साथ में गैर कानूनी काम भी करता है और लखन जो है वो जल्द से जल्द अमीर होने के ख्वाब जो है वो देखता है। तो इस तरह से फिल्म की कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और हम आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

फिल्म के गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और फिल्म के नामांकन और पुरस्कारों की अगर बात करें तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो था वो राखी गुलजार को मिला था और साथ में अनुपम खेर और सतीश कौशिक को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार जो है वो मिला था इस फिल्म के लिए। और साथ ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था और सुभाष कई को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है उसके लिए नामित किया गया था। और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था और मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और गायिका के लिए भी जो है वो इस फिल्म के लिए नामित किया गया था। तो आपको सुनवाते हैं चलते चलते इसी फिल्म से एक और गीत।

आप सुन रही थी कार्यक्रम एक ही फिल्म से, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं 100 डेज फिल्म से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने। गीत लिखा है दिलीप ताहिर ने और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म है बोल राधा बोल।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। दीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक और सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मर्डर 2 से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह, मोहम्मद इरफान और सईम भट्ट ने। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार हैं मिथुन।

अभी आप सुन रहे थे नई फिल्मों से गीत। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से ये गीत।

0: तुझे देखा, तुझे चाहा।
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म है छोटी सी मुलाकात।

आंखें फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नीलकमल से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने।

0: तो है थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। आज की
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
4: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
5: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Shubhendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
4: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
3: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations of the people of Bengal have placed on them and the mandate that they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Shubhendu Adhikari said, Whatever guarantees have been announced by Prime Minister Narendra Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming in that the swearing-in ceremony, which was to take place tomorrow, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government, as he again met the governor today and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. Meanwhile, the Indian Union Muslim League, headed by Professor Khadir Mohiddin, has said that his party has not given a letter of support to Tamil Raghavetri Karagam or TVK. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran, a partner in the NDA alliance, has approached the governor Vishwanath Arlekar late evening and submitted a letter of support from lone MLA S. Kamaraj from Manaragudi for AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy to form the government. Meanwhile, National Democratic Alliance Chief Ministerial Candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailashanathan and staked claim to form the next government in Puducherry. Mr. Rangasamy handed over letters of support from majority of MLAs to the Lieutenant Governor. NDA Alliance MLAs and Alliance leaders accompanied him. Earlier, a meeting of NDA Alliance parties and elected MLAs elected Rangasamy as the Chief Ministerial Candidate. Supreme Court today expressed concern over the rising drug menace in Punjab. The apex court called for a fundamental shift in how the state tackles narcotics, saying that the situation is alarming. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Malia Bagchi referred to a recent incident involving a mother who lost all her 5 sons to drug addiction. The bench also pulled up the state police for focusing on low-level offenders for publicity while allowing major traffickers to remain at large. The apex court also highlighted the huge pendency cases lodged under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. The Health Ministry has activated precautionary surveillance measures amid low global risk assessment of Hantavirus virus cases. Sources said the Health Ministry is closely monitoring the evolving situation relating to reported cases of Hantavirus virus infection on board the cruise ship MV Hontius. This is being done in coordination with the National Center for Disease Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization, and other international health authorities. Somnath Amrit Parv will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister, Narendra Modi, will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit

0: पर्व, शोकेसिंग इंडियाज रिच कल्चरल एंड हेरिटेज ट्रेडिशंस। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज बुलेटिन।
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।